एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे।

0: सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रेम प्रार्थना परमात्मा एक ही मंदिर की यह तीन सीढ़ियां हैं। श्रद्धा भरोसा समर्पण प्रेम का चढ़ावा है।

हम आकाश की तरह हैं और हमारे सुख सुविधाएं, दुख दर्द ऋतुओं की तरह हैं, वे आते जाते रहते हैं। हमें सब चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, रिश्ते महज भ्रम हैं। तो हे मन, प्रभु का स्मरण कर।

जीवन में ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास इसकी चाबी। अगर ये खजाना प्राप्त करना है तो अभ्यास करते रहिए।

बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को आज अपने सुरों से सजाया पंडित हरिओम शरण, संध्या मुखर्जी, वाणी जयराम और जगजीत सिंह ने। इन्हीं सुरों के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना को अब हम यहीं विराम देते हैं।

0: FM 102 दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु इस कार्यक्रम में आज का विचार है आत्मा अनुभूति। आलेख श्री अजय कुमार मुद्गल का है, वाचन श्री कृष्ण शरद ने किया है।
1: शुभ और अशुभ दोनों एक ही आत्मा के आंशिक प्रकाश मात्र हैं, फिर भी अशुभ मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का उसकी आत्मा का बाह्यतम आवरण है और शुभ अपेक्षाकृत। जब तक मनुष्य अशुभ के स्तर को छिन्न नहीं कर लेता तब तक वो शुभ के स्तर पर नहीं पहुंच सकता, और जब तक वो शुभ और अशुभ दोनों के स्तरों को पार नहीं कर लेता तब तक वो आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। आत्मा की प्राप्त होने पर उसके लिए फिर क्या रह जाता है? अत्यंत अल्प कर्म, अतीत जीवन के कर्मों का अति अल्प वेग, पर ये वेग भी शुभ कर्मों का ही वेग होता है। जब तक अशुभ वेग एकदम समाप्त नहीं हो जाता तब तक पहले की अपवित्रता बिल्कुल दग्ध नहीं हो जाती, तब तक कोई भी सत्य का साक्षात्कार और उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता। अतएव जिन लोगों ने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए अतीत जीवन के शुभ संस्कार, शुभ वेग ही बचा रहता है। शरीर में वास करते हुए भी, अनवरत कर्म करते हुए भी वे केवल सत्कर्म ही करते हैं। उनके मुख से सबके प्रति केवल आशीर्वाद ही निकलता है, उनके हाथ केवल सत्कार ही करते हैं, उनका मन केवल सत्चिंतन ही कर सकता है। उनकी उपस्थिति ही, चाहे वे कहीं भी रहें, सर्वत्र मानव जाति के लिए महान वरदान होती हैं। यदि वो कुछ भी न बोलें तो भी उसका होना मात्र मानवता के लिए एक आशीष स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से घोर दुरात्मा को भी संत बना देता है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा क्या कोई बुरा कार्य संभव है? ये सत्य है कि प्रतीक्षानुभूति और केवल मुख से कहने में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार की ज्ञान की बातें कहता है। तोता भी इस तरह बोलता है, मुंह से कहना एक बात है और अनुभव करना दूसरी बात। दर्शन, मतामत, विचार, शास्त्र, मंदिर, संप्रदाय आदि को अपने स्थान पर ठीक हैं, पर प्रतीक्षानुभूति होने पर ये सब पीछे छूट जाते हैं। जैसे नक्शा अच्छी चीज है, पर नक्शे में अंकित देश को स्वयं देखकर आने के बाद यदि उसी नक्शे को पुनः देखो तो कितना अंतर दिखाई पड़ेगा। अतीब जिन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है, उन्हें फिर सत्य को समझने के लिए न्याय युक्ति, तर्क वितर्क आदि बौद्धिक व्यायामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए तो सत्य जीवन का जीवन प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष

0: हो जाता है। प्रत्यक्ष उपलब्धि करने वाले लोग निःसंकोच भाव से कह सकते हैं, यही आत्मा है, हम चाहे उनके साथ कितना ही तर्क क्यों न करें, वे हमारी बात पर केवल हंसेंगे। जब हम ठीक ठीक प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तभी हमें प्रत्यक्ष उपलब्धि होगी और तभी हम वास्तव में धार्मिक होंगे। जब तक ये उपलब्धि हमें नहीं होती, तब तक हम में और नास्तिक में कोई भेद नहीं है। जो ये कहता है कि मैं धर्म में विश्वास करता हूँ, पर वो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की चेष्टा नहीं करता, वो निष्कपट नहीं हो सकता।
1: चिंतन बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का विचार था आत्म अनुभूति। आलेख श्री अजय कुमार मुद्गल, कथा वाचन श्री कृष्ण शरद। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान पाठ से लिए कुछ संगीतबद्ध अंश। स्वर कविता कृष्णमूर्ति का है, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमोची गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूल कर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से लिए कुछ संगीत बदंश। स्वर कविता कृष्णमूर्ति के थे, संगीतकार थे सतीश भाटिया। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले प्रमुख आकर्षण की जानकारी। रात्रि 10 बजे से आप सुन सकेंगे बी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी श्रम, प्रस्तुति टीएन शर्मा की रहेगी। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अनंतलाल और साथियों का शहनाई वादन राग मधुकोस में। संध्या 7:05 पर आप सुन सकेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम।

किसान भाई और बहनों के लिए लेकर आएंगे ब्रजी ग्रामीण कार्यक्रम संध्या 6:15 से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे धान की सीधी बिजाई और रोपाई में खरपतवार प्रबंधन विषय पर वार्ता। जानकारी देंगे डॉक्टर खजान सिंह, आपसे भेंट करेंगे दिलीप यादव। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में विषय रहेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, हीट स्ट्रोक से बचाव। इसी के साथ होगी वार्ता, विषय रहेगा ब्रज में जल एवं प्रकृति संरक्षण की विरासत। वार्ताकार होंगे आदित्य चूड़ामणि। सुबह 7:31 पर समय रहेगा ब्रज माधुरी कार्यक्रम का। 9:00 स्वास्थ्य कार्यक्रम, आज का विषय कैंसर रोग कारण लक्षण एवं निदान, आलेख देवांशी शर्मा का रहेगा। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा, विषय रहेगा तापमान में वृद्धि और पर्यावरण, आलेख व वाचन श्री सतीश शर्मा का होगा। गांधी चर्चा, समय रहेगा 9:30। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुन सकेंगे सुबह 11:00 से। प्राय गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 12:00। विशंबर दयाल शर्मा के गाये ब्रज लोकगीतों का आनंद लीजिएगा 12:30 से।

बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा दोपहर 2:30।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे नवरंग। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे से। संध्या 6:45 पर समय रहेगा कार्यक्रम संध्या वंदन का।

0: ये थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख आकर्षण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए हैं बासमती धान की उन्नत प्रजातियां तथा पौध की तैयारी। जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: सुगंधित धान विश्व में अपनी एक विशिष्ट सुगंध तथा स्वाद के लिए भली भांति जाना जाता है। इस धान की खेती भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों से की जा रही है। सामान्यतः बासमती धान की खेती सामान्य धान की खेती के समान ही की जाती है, किंतु बासमती धान की अच्छी पैदावार एवं गुणवत्ता के लिए इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भूमि की। भूमि, जलवायु एवं अन्य संबंधित कारक बासमती धान की सुगंध एवं स्वाद को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। बासमती धान की खेती के लिए अच्छे जल धारण क्षमता वाली चिकनी या मटियार मिट्टी उपयुक्त रहती है। आइए जानते हैं सुगंधित धान की प्रमुख प्रगतिशील या उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। पहली प्रजाति है टाइप 3। इसकी उपज होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा इस वैरायटी की अवधि है 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति है बासमती 370। ये भी 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 1। इसकी उपज होती है लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा इसकी अवधि है 130 से 135 दिन। एक अन्य उन्नतशील प्रजाति है पूसा सुगंध 2। इसकी भी उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा पकने की अवधि है 130 से 135 दिन। इसके अलावा जो उन्नतशील प्रजाति हैं वह है पूसा सुगंध 3, पंत सुगंध 1, पूसा 11-21। ये हमारे ब्रज क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसकी जो उपज प्राप्त होती है वह है 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ये प्रजाति 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके अतिरिक्त भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं पूसा सुगंध 4 और 5, जिसकी उपज भी अच्छी है तथा ये भी 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं बीज शोधन की। नर्सरी डालने से पूर्व बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए जहां पर जीवाणु झुलसा या जीवाणुधारी रोग की समस्या हो वहां पर 25 किलोग्राम बीज के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम प्लेंटोमाइसिन को मिलाकर पानी में रात भर भिगो दें। दूसरे दिन छाया में सुखाकर नर्सरी में इस्तेमाल करें। यदि शाकाणु झुलसा की समस्या क्षेत्रों में नहीं है तो 25 किलोग्राम बीज को रात भर पानी में भिगोने के बाद दूसरे दिन निकालकर अतिरिक्त पानी निकल जाने के बाद 75 ग्राम थीरम या 50 ग्राम कार्बेंडिज्म को 8 से 10 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज में मिला दिया जाए। उसके बाद उसे छाया में अंकुरित करने हेतु के बाद नर्सरी में डाला जाए। बीज की मात्रा तथा बीजोपचार की विधि इस प्रकार रखनी चाहिए। प्रजाति के अनुसार बासमती धान के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। 1.5 ग्राम कार्बेंडिज्म प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी पौध की तैयारी कैसे करें। बासमती धान की पौध तैयार करने के लिए उपजाऊ अच्छे जल निकास तथा सिंचाई स्रोत के पास वाले खेत का चयन करना चाहिए। 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 हेक्टेयर खेत की रुपाई के

0: लिए पौध तैयार की जा सकती है। बीज की बुवाई का उचित समय जल्दी पकने वाली प्रजातियों के लिए जून का दूसरा पखवाड़ा है तथा देर से पकने वाली प्रजातियों के लिए बुवाई मध्य जून तक कर देनी चाहिए। पौधशाला में सड़ा हुआ गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को मिट्टी में भली प्रकार से मिला देना चाहिए। खेत को पानी से भरकर दो या तीन जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए। खेत की छोटी छोटी तथा थोड़ा ऊंची उठी क्यारियों में पाट लेना चाहिए। बीज की बुवाई से पहले 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में 225 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 100 ग्राम यूरिया तथा 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट को अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई, सिंचाई, कीट रोग तथा खरपतवार की रोकथाम हेतु उचित प्रबंधन करना चाहिए। खेत में ज्यादा देर तक पानी नहीं रुकने देना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय था बासमती धान की उन्नत प्रजातियां तथा पौध की तैयारी। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार।

0: अस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानन्दः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अभी आपने सुना ये गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में। फिल्म थी आग, गीत के शब्द रचना बहजाद लखनवी की थी, संगीतबद्ध राम गांगुली का था।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले गीता दत्त और साथियों को फिल्म अदालत में। गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी।

फिल्म अमर से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना शकील बदायूनी की थी, संगीत बित किया था नौशाद ने।

ओबी नैयर के संगीतबद्ध इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, फिल्म थी आर पार, गीत को अपनी आवाज दी शमशाद बेगम ने।

0: आशा भोसले के गाए आबरू फिल्म से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: केवल भगवान से डरो। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार

0: होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात, कहा प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
4: The topic for the Governing Council meeting.
5: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
4: To youth, to working life, to old age.
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
6: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय रहते सटीक चेतावनी उपलब्ध होने से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की।

0: समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य, ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सेवा में 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ के लोकभवन सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के साथ संवाद करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख हो गई है। अयोध्या में कल हुए होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
4: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई ईपीएफ टाइप का सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है।
1: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रदेश के अमरोहा, पीलीभीत और गाजियाबाद सहित कुछ अन्य जिलों में बीती रात बारिश होने से लोग उमस भरी गर्मी से राहत में हैं। पीलीभीत में आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे।

0: बस्ती जिले में कल रात आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर के जलने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात, कहा प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

राधा करुणा और क्षमा का रूप है, जो बिना कहे भक्तों के दर्द समझ लेती हैं और उन्हें प्रेम से भर देती हैं। ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे सभी भैया बहनन को चंद्रा खत्री की जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो साथियों, आज ले चले आपको लीलाओं में, हाँ रास लीलाओं में। आज की लीला आप सुनेंगे गोवर्धन दास शर्मा की लिखी, प्रस्तुत टीएन शर्मा और हरिबाबू कौशिक की रासलीला बंसी लीला।

0: हे सखी, यह बंशी कहाँ बज रही है?
1: हाँ सखी, न जाने कहाँ बज रही है।
2: अरे वीर, यह बंसी तो ऐसी मधुर बज रही है जो हमारे मनन को अपनी ओर खींचे ही ले है।
3: हाँ सखी, न जाने प्यारे श्याम सुंदर यह बंसी को का प्रकार सो बजाए हैं। जाको सुन के हम सब ब्रज गोपी अपने घरन के काम धंधे को छोड़ दे हैं और शरीर की सुध बुद्धि भूल जाए हैं।
1: हाँ वीर, हमारी कहाँ चले, या बंशी ने सब ब्रज के जीव जंतु अपने बस में कर रखे हैं।
2: और सखी, एक अचरज की बात सुनाऊं?
1: हाँ सुनाओ सखी।
2: सखी, प्यारे श्याम सुंदर या बंसी को बजा में है तो तीन जगह सो टेढ़े है जाए हैं। न जाने या में कितनो बस है, ऐसो तो गिरिराज पर्वत उठाए में हूँ नाय भाई।
0: अहो बांस की बसुरिया तेतप की ओ कौन, अधर सुधा पिए को पिए हम तरसत बिच भौन। अरे वीर, या बंसी ने न जाने ऐसी कहा तपस्या करी है जो प्यारे श्याम सुंदर के अधरामृतन को रसपान करे है और हम अपने घरन में पड़ी तरसे हैं।
1: अरे सखियो, या बंसी ने बड़ी तपस्या करी है, देखो याने रात दिन जंगल में खड़ी रह के धूप सही, जाड़े सहे, बरसा सही, तब फिर कटी, फिर या को शरीर फूलो कियो, फिर जगह जगह से छेद किए, इतने कष्ट सहवे के उपरांत प्यारे के कर कमलन में या को स्थान मिलो है। फिर तो जाकी ऐसी बन के आई सखी कि प्यारे श्याम सुंदर ने अपने अधरन पे धर के या को अधरामृत को खूब पान करायो है और याकू अपने कर कमलन पेते ने कहूं अलग ना करे हैं।
2: हाँ सखी, तू कह तो साची रही है। और तो और, प्यारे श्याम सुंदर हु या की बड़ी सेवा करे हैं, अधरन के गद्दा तकिया लगाए के याकू सेन करामे हैं और होले होले अंगुरियन सो या की चरण सेवा करे हैं तथा अलकावलिन से या की ब्यार करे हैं।
3: अरे वीर, यह पंसी कहाँ है? यह तो हमारी साक्षात सौत है सौत। मेरे तो मन में ऐसी आवे है कि कैसे हो यह पंसी मेरे हाथ लग जाए तो चाकू तोरी मरोड़ के आँच में जलाए दूँ।

0: अरे वीर, ऐसे ना है। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं हूँ।
1: हाँ सखी, बताओ।
0: अरे सखी, कोई सखी चुपचाप जाए के प्यारे की बंसी को चुराए लाओ।
1: हाँ सखी, उपाय तो बड़ा सुंदर है, परंतु बंसी को लेवे को जाएगो कौन?
2: हे सखियों, हम सब में तो चतुर ललिता जी ही है, सो वही जाए के चतुराई सो प्यारे की बंसी को लाई सके।
1: अरे सखियों, धीरे धीरे बोलो, कोई सुन तो ना लेगा।
3: मैं सब सुन रहे हूँ सखियों, सब सुन रहे हूँ।
0: अरे दारी के, कहाँ सुन रहे हो है?
3: मैं सब सुन रहे हूँ सखी, तुम यही तो बतरा रही हो कि कन्हैया की बंसी चुरा ले हो।
1: तो हम कहाँ खोटी कर रही हैं?
3: तो यही कह रही हो कि श्याम सुंदर की बंसी चुरा ले हो, और का अभी जाए के दादा से कहूँ।
4: हाँ जा रहा, कह रही हो।
3: हाँ जा रहे हूँ। अरे कन्हैया, अरे दादा कन्हैया, ओ कन्हैया।
4: अरे भैया क्या बात है?
3: अरे दादा बात कहाँ है, आज गोपी है विचार कर रही कि काऊ उपाय सो श्याम सुंदर की बंसी को चुरा लो।
4: तो भैया फिर क्या करना चाहिए?
3: अरे भैया कर लो क्या चाहिए, या बंसी को तू मुंह दे दे।
4: जा सारे, तो कैसे दे दूंगा, तू गमा रहे तो पहले सखी छुड़ा लेंगी।
3: वाह, ले कैसे जाएंगी? देख मैं वहाँ बंसी को ले जाके दिल सिंह वाली गैया के सिंगनते बांध दूंगा, सो काऊ को मालूम होना पड़ेगी और कोई सखी वहाँ के पास होने जाएगी और तेरी बंसी बच जाएगी।
4: ना भैया मैं ना दूंगा तो बात खो जाएगी।
3: ना दादा खोवेगी ना, तू चिंता मत करे।
4: देख भैया मेरी बंसी खो गई तो एक ही दो ले लूंगा, दो
3: दो बंसी ले लूंगा। एक तो हम तेरी बंसी को चोरी है वे बचा रहे हैं, और तू हम टेढ़ो टेढ़ो बतरा रहे हो। अरे तू अपनी यही बंसी को ले लीजो।
4: देख भैया मेरी बंसी खो नहीं जाए।
3: ना भैया खोवेगी ना, तो चिंता मत करे।
4: अच्छा भैया ले, देख संवार के राखियो।
3: हाँ हाँ चिंता मत करे। और सुन सुन सुन दादा, या मैं छेद से कहा है?
4: अरे भैया ये सब सुर 3 ग्राम है, 3 ग्राम।
3: कहा कही सारे ससुरेन के 3 ग्राम है?
4: अरे ना भैया सप्त सुर 3 ग्राम है, सप्त सुर 3 ग्राम।
3: कहा 7 सुना 3 गुलाम, सबरे यही में घुसे पड़े है, निकलो रे।
4: जा सारे जा तो है ना, सप्त सुर 3 ग्राम।
3: अच्छा भैया होंगे कछु, अब ये तो बताए कि बजेगी कैसे?
4: ला मैं बजाए बताऊं।
3: ना मैं तो अपने आप बजा लूंगा।
5: आओ आओ लाला मधुमंगल लाल, आज तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो।
3: हाँ प्रसन्न क्यों ना होंगे भाई,
5: क्यों ऐसी कहा चीज मिल गई है?
3: मिल क्यों ना आएगी, ये देखियो ये मुँह पे कहा है।
5: कहा है?
3: हाँ
5: जी कहा है,
3: ये देख ले।
5: अरे तो लंबी लंबी सी तू भैया।
3: ये है कन्हैया की बंसी।
5: बंसी?
3: हाँ।
5: ओहो तो कन्हैया ने बंसी आज तो दे दी।
3: और का?
5: अरे भैया
3: हाँ।
5: तू यहाँ बंसी की सार को कहा जाने?
3: क्यों
5: ये तो कैसे तो बजे?
3: हाँ।
5: और कैसे राखी जाए?
3: हमें बजावे थे का मतलब है तो? हमारे पास बंसी है, लोग जी समझेंगे बड़ो रागी है, बड़ो बजाए बारो है।

0: हाँ
1: अबे हम पे गायब हो।
0: हाँ तो वो हमें तो अच्छा लगो ना है।
1: ना अच्छा लगो
0: ना।
1: तू कहाँ को अच्छा लगा रहो? तो अब ये बताए यह बंसी लेके कहाँ को जा रहे हो?
0: जाए कहाँ रहा हूँ? सखिन के पास जा रहे हूँ।
1: सखिन के पास?
0: हाँ।
1: अरे सारे तू तो जो है भोजन भरते भोजन भरते।
0: हाँ।
1: सखिन ने नेट तो कुछ खावे को लोभ दिया।
0: हाँ।
1: झट तो बंसी देनी पड़ेगी।
0: काय को देनी पड़ेगी? मैं तो खाए पी के आया हूँ खूब माखन मिश्री।
1: देख हम तो बता दें।
0: मैं तो चलो
1: सावधान लीजियो।
0: हाँ सावधान हूँ।
2: अरे सखियो अब तो प्यारे श्याम सुंदर की बंसी लाला मन सखा के पास आ गई है।
3: अच्छा सखी तब तो ये समझ लियो कि वो हमारे घर में आ गई।
2: अब याकू कछु लोग दिखाए के बंसी को ले लियो।
4: यह वृंदावन कैसा शोभायमान लग रहा है। मोर कैसे बोल रहे हैं, बंदर कैसे उछल कूद कर रहे हैं।
3: अजी लाला मनसुख लाल जी।
4: हा वृक्षन पे कैसी हरियाली छा रही है, फूल कैसे शोभा दे रहे हैं।
3: अजी लाला मनसुख लाल जी।
4: अरे ये मच्छर तो कहाँ भिन भिना रहे हो।
3: अजी लाला मनसुख लाल जी।
4: हाँ भाभी जी कहा तुम मोए बोल रही हो।
3: हाँ लाला बोल तो तुमको ही रही हूँ, परंतु तुम तो सुन ही ना रहे। देखो तुम्हारे लिए कैसी सदलोनी माखन की धरी है, सो आप याकू पाए ले।
4: अरे सखी देख मैं तो कन्हैया के संग में नित्य ही माखन मिश्री खाए के आया हूँ, सो अब मुकू भूख

0: आए।
1: अजी देखो लाला, हम तुमको नए नए कुर्ता टोपी पहनावेंगी।
0: अरे सखी, तो कहाँ मैं आप उघारा डोल रहे हो?
2: अजी लाला देखो, हम तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर की रासलीला दिखावेंगी।
0: ओह कहा कहीं रासलीला, रासलीला दिखावेगी? तो देख रासलीला को तो मैं बड़ो ही प्रेमी हूँ सखी, ला जल्दी दिखाए।
2: देखो लाला, श्याम सुंदर की लीला में पुरुष को अधिकार नहीं है, सखी भाव सो तुमको लीला देखनी पड़ेगी।
0: तो कहा मुकु सखी बनना पड़ेगा? ये तो बड़ा झंझट है जाएगा ना सखी, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मन सुखा ही ठीक हूँ।
1: सखी ना बनोगे तो लीला ना दिखेगी, सखी तो बनना ही पड़ेगा।
0: अच्छा, तो फिर सखी कैसे बनावेगी? सखी
2: देखो लाला, लहंगा फरिया पहरावेंगी, काजर लगावेंगी और बेंदी लगावेंगी।
0: अच्छा,
2: और देखो 16 सिंगार करेंगी।
0: अच्छा देख सखी, एक मेरी सुन ले, मो लहंगा पहरावे तो फरिया मत उड़ियो, काजर लगावे तो बेंदी मत लगाइयो, आधी सखी बनाए दे आधो सखा रहन दे।
1: ना ना ना ना ना, पूरी सखी बनना पड़ेगा। देख रासलीला है रही है और रासलीला देख।

0: लाला मन सुखा, उठ देख सबेरो है गयो।
1: अरे कहाँ गयो? बखेरो है गयो? कौन बखेरो है गयो?
0: अरे लाला, तोखू तो ऐसो प्रेम आयो के शरीर की सुध नाए रही।
1: हाँ सखी, प्रेम तो आयो, पर कछु तुमने प्रेम में नित्यनेम तो नाए कर लियो। अरे अरे मेरी बंशी, मैं कछु बंशी कहाँ है? अरे यहूना है, यहूना है सखी।
0: अरे लाला मन सुखा।
1: हाँ
0: का कछु खोए गयो है का?
1: हाँ हाँ सखी, खोए तो गयो है। अच्छा तुमने यहाँ कछु चीज देखी का?
2: अरे जादारी के, एक तो हमने राज दिखाया है।
1: हाँ।
2: और दूसरा तू हम पे चोरी लगावे है।
1: ना चोरी की बात ना है कछु, यहाँ मेरी बंसी खोई गई है, बंसी मिली का तुम्हें?
0: कादारी के, तो सरीखे गवारन को श्याम सुंदर अपनी बंसी देंगे।
1: तो कहा तुम सरीखे चतुरन को देंगे? बंसी दे दो सखियो, बंसी दे दो।
2: हमने कहा बंसी लेनी है?
1: दे दो भगवानो, बंसी दे दो सखियो, हाथ जोरू पाम पूजू
0: बंसी। ना है बंसी, जा भाग जा भाग जा।
1: अच्छा तो मैं कन्हैया से कह दूंगा।
0: कह दी
2: भाग गया, भाग गया। हम पे ना है बंसी।
1: अच्छा तो ठीक है।
3: अरे भैया मन सुखा, तू काई गुरो रहे हो, का बात है?
1: अरे दादा आज तो बड़ी बारी भूल है गई।
3: अरे का बंसी खो गई का?
1: नहीं दादा, बंसी तो नहीं कोई, बंसी तो मेरी पेट में है, पर एक बड़ी भारी चूक है गई है।
3: क्या चूक है ये? बता क्यों ना है?
1: तुम मारेगो?
3: नहीं मारूंगा, नहीं। साची साची बता दे।
1: देख दादा, तेरी बंसी तो खोए गई।
3: जा सारे, हमने तो पहले ही कही कि तू बड़ा गमार है, बंसी ये खोया है।
1: जा सारे, हमने तो पहले ही कह दी ना, हम बड़े पूरी लठ गमार है।

0: मैं बंसी मत दे, पर तेने कही रहा है ले जा ले जा ले जा।
1: अरे भैया ये तो बता दे कि बंसी कैसे हो गई।
0: देख दादा मैं यहाँ से जा रहे हो तो गैल में सखी मिल गई, उनने कही कि मनसुख लाल जी हम तुम्हें रासलीला दिखाएंगे। सो तू दादा जा नहीं है, मैं तो रासलीला को बड़ो ही प्रेमी हूँ। सो वहाँ रासलीला में मुख आएगा प्रेम और सखी ने कर लिया नित्यनेम।
1: अच्छा भैया अब चल गए, ये तो बता दे कि बंसी कौन ने लई है।
0: हाँ हाँ भैया बता तो दूंगा, परंतु बताऊंगा दूर से ही, क्योंकि सखी है रही है मरखनी। देख दादा जा माओ ये उंगरिया कर दो वाई को समझ लीजो। देख दादा देख यो देख देख मेरी उंगरिया
1: ऊपर को
0: देख, ऊपर को ना है
1: तो नीचे को,
0: अरे नीचे को ना बीच में देख।
1: अच्छा
0: हाँ जी जी बैठी का जी जी हाँ गोरी गोरी जी जी यही पे है, मांग ले मांग ले।
1: अरे ललिता सखी का तुमने हमारी बंसी देखी है।
2: हे महाराज हम पे तुम्हारी बंसी भला कहाँ ते आई, कौन ने कही।
1: अरे ललिता सखी मनसुख लाल जी के।
2: ए मनसुखा ना कही का।
0: अरे अरे अरे अरे मार मार क्यों रही हो, अरे अरे अरे अरे अरे अरे, अरे कन्हैया सारे तो पिटवा रहे हो। देख भैया अब तेरी बंसी इन्हीं पे ही है, अब तेरी तू जाने मैं तो चलो।
1: अरे सखी हमारी बंसी हो तो दे दो।
2: हे महाराज कैसी बंसी, हमने तो देखी ना है, कहा बंसी खोए गई है का।
1: हाँ सखी हमारी बंसी खोए गई।
2: आहा प्यारे हमको तो बड़ो ही सुख भयो है।
1: अरे सखी हमारी तो बंसी खोए गई, तुमको कहा सुख भयो।
2: हे प्यारे श्याम सुंदर हमें यह सुख भयो कि जब तुम अपनी बंसी को बजाओ करते तब हम अपने अपने घरन के काम धंधे को छोड़ दे मई और हमारी सास नंद हमसे लड़ो करें, और अब न तुम्हारी बंसी बजेगी न हमारे घर को काम छूटेगो और न ही हमारी सास हमसे लड़ेगी।
1: देख सखी जब हम वन में गैया चराए जाए तो गैया को घास चढ़वे को खुली छोड़ दें, तो गैया चरती चरती बहुत दूर निकल जाएं। जब घर लौटवे को समय होए तो गैया कदम पर चढ़ के बंसरी बजाए दें, तो गैया पेड़ के नीचे आ जाएं। हमको यह दुख है।
3: तो महाराज हम कहा करें।
1: अरे सखी देखो बंसी तुम्हारे कछु काम की ना है, मेरी बंसी को दे दो।
2: हे महाराज हमने तो तुम्हारी बंसी देखी ना है, तो महाराज फिर हम कैसे दे दें।
1: अच्छा तो सखी अब यह तो बता दो कि यहाँ को राजा कौन है।
3: क्यों महाराज राजा सो कहा काम है।
1: अरे सखी यूँ कहे करें कि जा राजा के राज में जो चीज खोई हो वो राजा को ही देनी पड़े।
2: तो महाराज यहाँ की राजा तो श्री किशोरी जी हैं।
1: तो देखो मेरी बंसी किशोरी जी को ही देनी पड़ेगी।
3: तो महाराज जा राजा को जो कर लगे वो बाकू दे दो,
2: कहूं पड़ी होगी तो ढूंढवा देंगे।
1: अरे सखी का कर होए।
2: हे महाराज किशोरी जी की विनती करो।
1: अरे सखी ये तो हम पहले ही सोच के आए हैं।
2: तो फिर पूछ काय को रहे हो।

तो श्रोता साथी अब ही सुन रहे गोवर्धन दास की लिखी रासलीला बंसी लीला, या की प्रस्तुति टीएन शर्मा और हरि बाबू कौशिक की थी। बस यही के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देवे हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
2: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार, साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो

और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी

0: बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
2: We signed this year a free trade agreement with Europe.
3: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
5: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
4: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

राजा मेहंदी अली खान के लिखे इस गीत की शब्द रचना मदन मोहन का संगीत बद संगीत और सुर दिया लता मंगेशकर ने। फिल्म थी मेरा साया।

0: हसरत जयपुरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। फिल्म थी मेरे हुजूर, गीत को अपना सुर दिया मोहम्मद रफ़ी ने।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले के सुरों में फिल्म मेरे महबूब से।

0: शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया नौशाद ने। फिल्म मेरी महबूब से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर आशा भोसले के युगल सुरों में।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का।

0: आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आशा भोसले किशोर कुमार के युगल सुरों को अभी आपने सुना फिल्म मांग भरो सजना में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कल्याण जी आनंद जी की संगीतबद्ध इस गीत की शब्द रचना साहिर ने की थी। फिल्म थी लावारिस। आशा भोसले किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में विषय लेकर आए हैं कैंसर रोग कारण लक्षण एवं निदान। आलेख देवांशी शर्मा का है, वाचन राजेश शर्मा का है, प्रस्तुति की है OP सिंह ने।

0: खालीपन है और अकेला हूँ मैं, जैसे कोई निर्जन वन है और अकेला हूँ मैं। जिसको सुनकर रातों को मैं अक्सर जाग जाता हूँ, मेरा अपना ही क्रंदन है और अकेला हूँ मैं।
1: दूर तक दृष्टिपात करने पर आज देखने में आ रहा है कि सृष्टि के सबसे समझदार प्राणी मनुष्य ने अपनी थोड़ी सी नासमझी के कारण खुद को दांव पर लगा दिया है।
0: मानव ने कुछ ऐसी विषैली वस्तुओं का सेवन प्रारंभ कर दिया है जो उसे उसी प्रकार जीवन के अवसान पथ पर ले जा रही हैं, जैसे एक विशाल वट वृक्ष में दीमक का प्रवेश।
1: बढ़ता हुआ प्रदूषण, जीवन में अत्यधिक रसायनों का प्रयोग, फास्ट फूड और जीवनचर्या में हुए परिवर्तन, इन सभी कारकों ने मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। परिणाम स्वरूप आज जीवन पर घातक बीमारियों ने मानो हमला कर दिया है।
0: इन्हीं बीमारियों में से एक गंभीर रोग कैंसर यानी कर्कट रोग के प्रति जन जागरूकता और इससे होने वाली मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के उपायों के चिंतन का विषय है।
1: इस पर अपने विचारों के साथ हैं डॉक्टर अज्जू माहेश्वरी।
2: आज के समय में कैंसर के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने प्रगतिशील देश हैं उनको भी इस कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और इसी कारण इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक दिन निश्चित किया गया है। ये जो दिन है इसके ऊपर विशेष रूप से जो काम करने वाली एजेंसी है, बॉडी है, उसका नाम है UICC, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये एक ऐसी संस्था है जो 170 करीब देशों में काम कर रही है और करीब 1180 से अधिक संस्थाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो ये दुनिया भर में कैंसर पेशेंट्स के बारे में बात करना, उनकी तकलीफों के बारे में बात करना, उनको किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, इस साल के लिए जो स्लोगन है वो है क्लोज द केयर गैप। अब इसका अगर आप मतलब समझेंगे कि क्लोज द केयर गैप का अर्थ है कि जितने भी लोगों को हम ये सुविधाएं कैंसर की रोकथाम के लिए देना चाहते हैं उन तक ये पहुंच नहीं पाती हैं। उनमें कई लोग हैं जिन जो इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इन सेवाओं से। यद्यपि हम इनके बारे में बात तो करते हैं, पर अगर हम देखें कि क्लिनिक्स के लेवल पे, गाँव के लेवल पे लोगों को आज भी कई दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो UICC या जितने भी दुनिया भर में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि हम इसको जो केयर में जो गैप है हम इसको कम करें और इसके बारे में कुछ जरूरी जो सेवाएं हैं उसके बारे में बात की जाए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले।
0: पुरुषों में होने वाले सामान्य प्रकार के कैंसरों में फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, यकृत और आमाशय के कैंसर हैं।
1: महिलाओं में सबसे सामान्य प्रकार के कैंसर स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, गर्भाशय, ग्रीवा और थायराइड कैंसर हैं।
0: भारत में मुख्य रूप से स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर हैं।
1: सामान्यतः कैंसर किसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कुछ कारण है? अगर है तो इनके प्रकार क्या हो सकते हैं? प्रकाश डालते हुए डॉक्टर प्रिया तिवारी।
3: कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनके लिए अभी वैक्सीनेशन आ गई है, खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर। स्त्रियों में एक सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत ही कॉमन कैंसर है और जिससे मृत्यु भी होती है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अब इंडिया में अवेलेबल है। ये हर छोटे बड़े शहर में अवेलेबल है और यह वैक्सीनेशन 9 साल से ऊपर की सभी लड़कियां ले सकती हैं। जनरली कहते हैं कि 9 से 26 साल की उम्र में लेना चाहिए और

0: अगर आप लेते हैं तब सर्वाइकल कैंसर होने का चांस है ये भी काफी कम हो जाता है।
1: जिन मरीजों का सर्जरी से इलाज संभव नहीं होता उनके लिए रेडिएशन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया किस प्रकार है जानकारी के साथ है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर चरण सिंह चौधरी।
2: मुख और गले के कैंसर में जो बाहर

0: दो फायदे हैं, वो सर्जरी के पश्चात ट्यूमर के कुछ अंश जो सर्जरी से अछूते रह जाते हैं उन्हें किल करने की पूरा प्रयास करती है ताकि ट्यूमर की रिकरेंस ना हो। इसके अलावा जो मुख और गले में कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर सर्जरी संभव नहीं है, सर्जरी के पश्चात हम उसके ऑर्गन के फंक्शन को काम में नहीं ले सकते। ऐसी कंडीशन में हमारा रेडिएशन का जो एम होता है वो चेहरे पर बिना विकृति दिए हुए और ऑर्गन के फंक्शन को प्रिजर्व करते हुए जीव और गले को सर्जरी से बचाते हुए ट्यूमर को रेडिएशन से ही समाप्त किया जाता है। तो एक तरह से रेडिएशन जहाँ सर्जरी संभव नहीं है वहाँ सर्जरी का सब्स्टिट्यूट है, और जहाँ सर्जरी संभव हो पाती है वहाँ सर्जरी के साथ एडजुवेंट रूप में दी जाती है।
1: वैसे कैंसर के सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, ऐसा होने पर निदान क्या हो सकता है, जानकारी देते हुए डॉक्टर मनीष सिंघल।
2: जनरली कैंसर के कुछ लक्षण हैं जो हर इंसान को जानने चाहिए, और ये लक्षण हैं शरीर में कहीं भी गांठ, खासतौर पर स्तन में गांठ या गले में कोई गांठ या शरीर में के किसी भी भाग में गांठ, इस तरह की गांठ को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपका वजन कम हो रहा है या आपको बुखार है, जो हल्का फुल्का बुखार लंबे समय तक चल रहा है, या वजन कम हो रहा है, या आपको भूख नहीं लग रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कैंसर का लक्षण हो सकती हैं। अगर आपसे खाना निकला नहीं जा रहा है और आप उसको सटक नहीं पा रहे हैं, या आपके मुंह के अंदर कोई ऐसा छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है और इसकी भी ठीक तरह से जाँच होनी चाहिए। यदि आपका पेट खराब रहता है, यानी कि कभी आपको दस्त लग जाते हैं या कभी कब्ज हो जाती है, ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। लैट्रिन में खून आना या फिर पेशाब के रास्ते से खून आना या कहीं से भी खून आना भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, और इसे ठीक तरह से जांच करानी चाहिए। अपने आप पर गौर करें, अपने आप को देखें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सही टाइम पे लेकर आए ताकि डॉक्टर्स आपका इलाज कर सकें और आपको ठीक कर सकें और कैंसर से हम निदान पा सकें।
3: इसके इलाज की सर्जरी तकनीक क्या है, क्या ये दीर्घावधि की है, बताते हैं डॉक्टर हरित चतुर्वेदी।
4: जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, अब जो कॉमन वे ऑफ सर्जरी है वो है वैट्स वीडियो असिस्टेड फ्रैकोस्कोपिक सर्जरी, इसमें कि कैमरा डाल के अंदर देखते हुए छोटे कट के थ्रू सर्जरी की जाती है, तो उससे रिकवरी बहुत अच्छी होती है। रोबोटिक सर्जरी भी लंग कैंसर बहुत सार्थक है, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसमें भी हम लोग लोबेक्टमी या जो भी प्रोसीजर करना होता है उसको रोबोटिक कैमरा में डॉक करके उसको देखते रहते हैं और साथ में वेसल्स क्लिप्स को लाइगेट करके उस एरिया को निकाल देते हैं। तो उससे पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत अच्छी होती है। वही पेशेंट जो पहले लंबा कट लगता था, अस्पताल में एक हफ्ते रहता था, वो छोटे छोटे तीन कट लगते हैं और वो हॉस्पिटल में तीन दिन में घर चला जाता है, दो दिन में घर चला जाता है। सो लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स हैव हैपेंड।
1: तंबाकू सेवन कितना घातक है, तंबाकू जनित बीमारियों का अंत, क्या कैंसर हो सकता है, आइए जाने डॉक्टर वी के सिंह से।
5: जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से आधे लोग तंबाकू से होने वाली बीमारियों की वजह से अपनी नेचुरल जो उनकी उम्र है उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जितने भी स्टडीज हैं वो बताती हैं। इसलिए तंबाकू को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। तंबाकू से सबसे पहले मुंह में नॉन कैंसरस जो बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, वो बनती हैं, जैसे कि हम सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। इन सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस की वजह से उनका खुलना प्रॉपर नहीं हो पाता है, दांतों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, उनमें टैनिंग होने लगती है, काले भद्दे हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी उसमें लगती हैं। जहाँ तक कैंसरों की बात है, कैंसर गले को, गाल को, जीभ को, तालू को और यहाँ तक कि स्वर यंत्र को प्रभावित करता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, अगर स्टेज बढ़ जाती है तो ट्रीटमेंट असंभव हो जाता है, अन्यथा ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला और अपने मुंह को विकृत बनाने वाला हो जाता है, जिससे कि जीवन जो है बिल्कुल नरक के समान हो जाता है।
1: ब्रज क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार के कैंसरस मरीज इलाज प्रक्रिया में हैं, इनके इलाज में क्या मुख्य व्यवधान चिकित्सकों के समक्ष आता है, जानकारी के साथ हैं डॉक्टर भावना शर्मा।
6: हम लोग के अस्पताल में ज्यादातर जो है वो मुंह के कैंसर वाले पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि गुटखा तम्बाकू का बहुत प्रचलन है, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें से ज्यादातर को मुख का कैंसर होता है, जैसे जीभ का, गाल का, जीभ के पीछे वाले हिस्से का, होंठ का, तालू का, टॉन्सिल्स।

0: दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो स्वरयंत्र जो होता है, गले का कैंसर जो होता है, उसके पेशेंट्स होते हैं। वो भी मुख्यतः जो उसमें कारण है वो तंबाकू ही है, चाहे बीड़ी पीने की वजह से या तंबाकू खाने की वजह से, ये पेशेंट्स भी हमारे पास बहुतायत में होते हैं। फिर उसके बाद अन्य कैंसर जो है, जैसे फेफड़े का कैंसर, छाती का महिलाओं में, बच्चेदानी के मुख का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, ये सब कैंसर हैं जो और मुख्यतः हम लोग के पास आते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब एक बार ही उनको पता चल भी जाता है कि उनको कैंसर है, तो वो घूमते रहते हैं इधर उधर और राय लेते रहते हैं कई लोगों से। उनको ये विश्वास ही नहीं हो पाता कि उनको कैंसर है, तो वो बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, तो हमारे पास बहुत देर से आते हैं। ज्यादातर हमारे ये मानिए कि 90% मरीज जो है वो देसी इलाज करा के आते हैं, उसमें उनको नहीं मिल पाती सक्सेस और वो उससे उन्हें लगता है कोई फायदा नहीं है, तब वो हमारे पास आते हैं। तो बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उस स्थिति में उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको नियंत्रण में लाना।
1: गले पे ऑपरेशन भाव में 20 साल दे, 3 तो मंडल पी रोज और 4-5 खावे रोज ना, 3 लाख रुपया पीओ में। अब तक डॉक्टर जी कहते हैं तम्बाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, बीड़ी मत पियो। मैं तो 79 कर रहा हूँ, मेरे गले में रुपये लग गए, जीवन खराब है, वो छोटे छोटे बच्चा है, छोड़ दो।
2: सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन सामाजिक रूप से तो गलत है ही, साथ ही ये अपराध भी है, बताते हुए वरिष्ठ अभियोजक अशोक कौशिक।
3: सार्वजनिक स्थल पर उन सब पे सरकार ने ये कानून बनाया है कि सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई धूम्रपान नहीं करेगा, ना ही कोई तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करेगा, और इसके उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ साथ ये भी है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसके 100 मीटर के व्यास के अंदर, उसके बाहर 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी तंबाकू का ना इस्तेमाल करेगा, ना ही बेचेगा, ना ही धूम्रपान करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता उसके ऊपर भी 2,000 रुपए पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया है, इसमें स्पष्ट प्रावधान किया है कि 18 वर्ष के कम आयु वाले व्यक्ति को ना तो सिगरेट बेची जाए, ना ही तंबाकू का उत्पाद बेचा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो उसके ऊपर धारा 6 में मना किया गया है, प्रतिषेध है, और उसका उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए के दंड का प्रावधान किया गया है।
2: इस तरह से हम में से प्रत्येक, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति की अपनी एक योग्यता है, जिसके प्रयोग से हम वास्तविक प्रगति और विकास के साथ साथ वैश्विक स्तर पर कैंसर के बढ़ते प्रभाव को क्षीण बनाने में, जन जन को जागरूक करने, इससे प्रभावित मानव जीवन रक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन में अपना अमूल्य योगदान देंगे।
4: अब तम का अवसान हुआ, नई चेतना जाग रही, ज्ञान रश्मियां लगी फैलने, बीमारी भी भाग रही।
2: इसी तरह चेतना रही तो मंजिल अपनी पा लेंगे, बुद्धि ज्ञान स्फूर्ति मिलेगी, घाटा अपना भर लेंगे।
4: कर इन सब का निषेध, बचकर रहेगी मानव की जान, अब इसके जहर से नहीं होगा किसी जीवन का अवसान।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज का विषय लेकर आए थे कैंसर रोग कारण लक्षण एवं निदान। आलेख देवांशी शर्मा का था, वाचन राजेश शर्मा, प्रस्तुति ओपी सिंह की थी। आहिस्ता चल ए जिंदगी, आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ के दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है, थोड़ी ही देर में होगी जिले की हलचल।

0: की हलचल आज सुनिए फरुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IGR शिकायतों के निस्तारण एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, शिकायतकर्ताओं से संवाद, साक्ष्यों के अपलोड तथा फीडबैक की गुणवत्ता की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सक्षम अधिकारी स्वयं निस्तारण की आख्या परीक्षण कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तथा तत्परक समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारण आख्या के साथ आवश्यक साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, जिसमें शिकायतकर्ता से वास्ता, स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तथा शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दो पड़ोसियों के बयान सम्मिलित हों। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोकने के आदेश दिए।
2: अधिकारियों के लेवल पे जो असंतोषजनक फीडबैक है वो भी चेक किया गया और समीक्षा करने पे पाया गया कि असंतोषजनक फीडबैक के मुख्य कारण ये थे कि शिकायतकर्ता से फोन पे बात की नहीं गई है। इसलिए बार बार निर्देशित भी किया गया था मीटिंग के तहत कि इसको फीडबैक लिया जाए।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी द्वारा जनपद के हरदोई कमालगंज मार्ग पर गंगा नदी पर 191.13 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने पहुंच मार्ग पर संभव कटान वाले स्थलों के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से अब तक किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की प्रगति की आख्या प्राप्त की। उन्होंने गंगा नदी किनारे कराए जा रहे पिचिंग कार्यों के भौतिक सत्यापन भी किया तथा कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए जाने के पूरे निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पूरी गुणवत्ता तथा मानक के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें आम जन को आवागमन से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजना जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने नियमित रूप से कार्यों की निगरानी तथा कटान प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति संभावित न रहे। फरुखाबाद जनपद में परिवहन विभाग द्वारा किसानों की सुविधा एवं उनके वाहनों से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किसान ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से किसानों को ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवश्यक सेवाएं सरल एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराई गयी। शिविर में पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन, आवश्यक अभिलेखों की जाँच, अन्य संबंधित प्रक्रियाएं पूर्ण की गयी, जिससे किसानों को विभागीय कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन द्वारा ये प्रयास किसानों को सुगम, पारदर्शी एवं जनहित सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर मनोहर लोहिया अस्पताल में 18 करोड़ की लागत से बन रहे क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में देरी के चलते उस पर पेनल्टी लगाई गई है तथा कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट को हैंडओवर कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फरुखाबाद जनपद में मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना अंतर्गत शाकभाजी कार्यक्रम एवं बागवानी मशीनरीकरण योजनाओं के हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नवीन गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद फरुखाबाद के कृषकों के लिए विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त हुए। योजनाओं के उद्देश्य कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों तथा कृषि यंत्रीकरण से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि कराना है। आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकर शाकभाजी कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु 30 हेक्टेयर तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 10 हेक्टेयर, कुल 40 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आधारित बागवानी मशीनीकरण योजना अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। फरुखाबाद जनपद में जिला जज नीरज कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का फीता काटकर समाधान समारोह का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण में रफ्तार मिलेगी, सुलह समझौतों से समाधान होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में समाधान समारोह 2026 के सफल आयोजन को लेकर जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले चिन्हित वादों के निस्तारण हेतु प्री सिटिंग वार्ताओं और सुलह समझौते की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज समेत अन्य न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
0: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
3: बीता माह जनपद शाहजहांपुर के लिए विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक उपलब्धियों, धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। जिले में जहां एक ओर विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी जन जागरण के लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। माह के पहले सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण की दिशा

0: जिला में मिर्जापुर विकास खंड के ग्राम पहरुआ स्थित ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण, सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य तालाब में रहने वाले कछुओं का संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन तथा जैव विविधता को बढ़ावा देना है। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही भैंसी और गोमती नदी तटों पर हरिशंकरी वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया गया। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर क्षेत्र में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम की समीक्षा बैठक में 108 सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई तथा 15 जून तक 5 प्रमुख सड़कों का निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। माह के दूसरे सप्ताह में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अभ्यर्थियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष यातायात अभियान में 1013 वाहनों के चालान किए गए तथा 3 नए वाहनों को सीज किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शाहजहांपुर में अपनी पहचान मजबूत की। जिले के युवा रंगकर्मी यश देव शर्मा और शैलेंद्र पटेल का चयन भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ की अंतिम चयन कार्यशाला के लिए हुआ। इस उपलब्धि को जिले के रंगमंच जगत के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में गायत्री परिवार की ज्योति कलश रथ यात्रा पूरे माह चर्चा का केंद्र रही। शांति कुंज हरिद्वार से 2400 तीर्थों की रज लेकर निकली यह यात्रा जिले के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, आरती और जयघोष के साथ स्वागत किया। रथ यात्रा के माध्यम से विचार क्रांति, युग निर्माण, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, आत्म सुधार और संस्कार निर्माण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर दीप यज्ञ, सामूहिक प्रार्थना और साहित्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भावलखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत तहवरगंज आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा एक बालिका का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना शामिल है, ताकि नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और संस्कारित नई पीढ़ी के निर्माण में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। एक जनपद एक उत्पाद ODOP वित्त पोषण योजना स्थानीय उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना का लाभ लेकर शाहजहांपुर के 2 उद्यमियों ने न केवल अपना कारोबार स्थापित किया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। मोहल्ला बाड़ूजी पेशावरी निवासी मोहम्मद राशिद ने जरी जरदोजी की इकाई स्थापित करने के लिए केनरा बैंक घंटाघर शाखा से 3 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। इस सहायता से उन्होंने अपना काम शुरू किया, जिससे 5 अतिरिक्त परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से भी अधिक पहुंच चुका है। वहीं मोहल्ला लोधीपुर निवासी रुकैया खान ने केनरा बैंक सदर शाखा से 5 लाख रुपए का ऋण लेकर जरी जरदोजी की इकाई स्थापित की। उनके उद्यम से भी 5 परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का कारोबार 9 लाख रुपए से अधिक का हो गया है। दोनों उद्यमियों ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा मिले सहयोग और प्रोत्साहन को दिया है। उन्होंने कहा कि ODOP योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और दूसरों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय लेकर आए हैं तापमान में वृद्धि और पर्यावरण। आलेख व वचन श्री सतीश शर्मा का है।
3: विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता के कारण इन संसाधनों का अनुचित रूप से दोहन हुआ है, जिससे प्राकृतिक धरोहर का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। इंसानी

तरह देखिए कि जिन चीजों को हमें कीमत चुकानी पड़ती है उन्हें तो हम पूर्ण सतर्कता के साथ बरतते हैं, परंतु मुफ्त में प्रकृति प्रदत्त चीजों को अनावश्यक रूप से उपयोग करते हैं। इनमें कोई संशय नहीं है कि पर्यावरण सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है ही नहीं। यहीं से पर्यावरण की समस्याएं शुरू होती है। उन्हीं में से एक समस्या है विश्व तापमान में वृद्धि, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हमारे वातावरण के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की किरणों से ऊष्मा वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है तथा परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती है। हमारा वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। ये गैस एक प्राकृतिक आवरण को बना लेती है। यह आवरण लौटती किरणों के कुछ हिस्से को रोक लेता है, परंतु हरित ग्रह गैसों की बढ़ोतरी के कारण यह आवरण मोटा होता जा रहा है, जो तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसे हरित ग्रह प्रभाव भी कहा जाता है तथा तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार गैसों को हरित ग्रह गैसें भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हरित ग्रह गैसें कौन कौन सी है। तो इनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि हरित गैसें हैं, परंतु इन सब में प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही इन गैसों के स्रोत की बात करें तो वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, हवाई जहाजों तथा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले धुआं मुख्य स्रोत हैं। प्रकृति दोहन के कारण हमें यह अंदाज नहीं है कि हम कितनी विपरीत परिस्थितियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों का अगर जिक्र करें तो अनुमानित 2020 तक वायुमंडल के तापमान में 2 डिग्री तक वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे समुद्री जल सतह में बढ़ोतरी होगी तथा तटीय इलाकों में रहने वाले लोग बेघर हो जाएंगे। तापमान बढ़ने के कारण संक्रामक बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू आदि जैसे रोग बढ़ेंगे। साथ ही इसका प्रतिकूल प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र पर भी पड़ेगा, जिससे वनस्पतियां तथा जीवों की संख्या में कमी होने लगेगी। वर्षा में अनियमितता, अतिवृष्टि, अल्प वर्षा जैसी समस्याएं पैदा होंगी। इसके समाधान की अगर बात करें तो जितने भी विकसित देश हैं उन्हें क्योटो संधि का सख्ती से पालन करना होगा। पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून को बनाना होगा तथा वृक्षारोपण को अधिक से अधिक मात्रा में करना होगा। ऐसे उद्योगों पर पूर्णतः रोक लगानी होगी जो कि ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के साधनों को अधिक विकसित करना होगा। इन्हें विकसित करने पर जोर देना होगा। व्यक्तिगत ऊर्जा व्यय की खपत को कम करना होगा, जैसे कि हमें हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करके पैदल चलना या साइकिल आदि का उपयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण समाधान अगर कुछ है तो वो है संरक्षण के लाभों, सकारात्मक प्रयासों व उपयोगों के प्रति लोगों को शिक्षित करना व जागरूक करना। साथ ही हमें यह स्वीकारना होगा कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन विविधता से ही मेरा परिवार एवं विश्व के अन्य नागरिकों का अस्तित्व है। अंत में आज की चर्चा को इस कथन के साथ विराम देना चाहूंगा, आओ सब मिलकर वातावरण को बचाएं, रोके वह संकट जो हमारी विरासत को निगल जाएं। श्रोताओं, अंत में मेरी आपसे अपील है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों को जन भागीदारी, जन चेतना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आवश्यकता है प्रकृति, पर्यावरण व मानवीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन की। हमें प्रकृति से उतना ही लेना है जितना हमारे भरण पोषण के लिए आवश्यक हो तथा उतना छोड़ना है जो भविष्य के लिए अनिवार्य हो। अतः पर्यावरण को संतुलित रखने की जिम्मेदारी जन समुदाय की है। आओ मिलकर संकल्प लें तथा पर्यावरण को बचाएं।

कार्यक्रम आबोहवा में आज का विषय लेकर आए थे तापमान में वृद्धि और पर्यावरण। आलेख व वाचन श्री सतीश शर्मा का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। आज का विषय लेकर आए हैं गांधी जी की प्रासंगिकता। प्रस्तुति डॉक्टर सत्यदेव आजाद की है।

समग्रता में देखा जाए तो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गांधी जी युग दृष्टा के रूप में प्रासंगिक न हो। उनकी प्रासंगिकता को आज के जीवन और राजनीति के कुछ एक क्षेत्रों के संदर्भ में परख कर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए धर्म से सांप्रदायिकता के संबंध का सवाल है। गांधी जी अपने पूरे व्यक्तित्व में धर्मनिरपेक्ष थे और साथ ही वे एक गहन धार्मिक व्यक्ति और आस्थावादी भी थे। उनको अपनी इन दोनों ही स्थितियों में समन्वय स्थापित करने में कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन यदि धर्म और सांप्रदायिकता के रिश्तों के बारे में उनके विभिन्न वक्तव्यों को संदर्भों से काटकर देखा जाए तो गांधी जी को गलत समझा जा सकता है। गांधी जी वर्षों तक ये मानते रहे कि धर्म और राजनीति में फर्क नहीं है, लेकिन रिलीजन से उनका तात्पर्य हमेशा नैतिकता से रहा। गांधी जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विरासत अहिंसा के प्रति उनका आग्रह था, जिसे आज भी अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अलग बात है कि अभी तक अहिंसा का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के लिए अहिंसा का जो रणनीतिक मानक स्थापित हुआ है, उसने गांधी जी को हमारे समय का सर्वाधिक प्रासंगिक नेता और चिंतक साबित कर दिया है। पोलैंड, जर्मनी और अमेरिका में घटी हुई घटनाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि राजनीतिक कार्रवाई और विरोध के व्यवहार के रूप में अहिंसा पर गांधी जी का आग्रह बुर्जुआ आदर्श का रुचिवादी प्रयास नहीं था, बल्कि उसमें आधुनिक सामाजिक प्रगति और जन आंदोलनों के प्रति एक सामाजिक क्रांतिकारी की गहरी समझ भी थी। वास्तविकता तो यह है कि वे भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते थे। प्रत्येक भारतवासी को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, कर्मनिष्ठ, अहिंसक और सत्यनिष्ठ बनाना चाहते थे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति एक नवीन परिवेश में जीवन निर्वाह करे, कहीं ईर्ष्या, द्वेष और बुराई न रहे। यही उनके रामराज्य की परिकल्पना थी। गांधी जी का पूरा दर्शन

नैतिकता की पक्की चट्टान पर आधारित है। वह जीवन भर नैतिक मूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे। उनका विश्वास था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बिना धर्म के राजनीति मृत्युपाश की तरह है। गांधी जी का धर्म से अभिप्राय आडंबर और रीति रिवाजों से नहीं था, बल्कि ऐसे शाश्वत मूल्यों से था जिनके अनुपालन से समस्त मानवता का कल्याण होता है। इसी मानवता पर गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत आधारित है।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सजाते हैं आज गजलों की महफिल। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आज सजी है गजलों की महफिल। कलाकार है गुलाम अली।

मोहब्बत में ही मिलते हैं शिकायत के मज़े, मोहब्बत में ही मिलते हैं शिकायत के मज़े, मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है।

0: मन केंद्र है। लीजिए पेश फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: But everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, one, two, three, four.
2: Now.

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सजी थी एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर गजल की महफिल। कलाकार थे गुलाम अली। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन

बड़े मियां छोटे मियां। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और अमित के सुरों को। गीत की रचना की थी समीर ने और संगीतबद्ध किया था विजू शाह ने।

हीरो फिल्म से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये चंक समाप्त होता है और आरंभ करते हैं फिर से नया चंक नए गीतों के साथ।

आपने ये गीत सुना फिल्म कबीर सिंह से। इस गीत को अपने सुरों में पिरोया अखिल सचदेवा तुलसी कुमार ने।

0: अभी आप सुन रहे थे तनिष्क बख्शी, फहीम अब्दुल्ला और साथियों को फिल्म सैयारा में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल

0: हेलो,
1: हेलो आकाश वाणी मथुरा।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी।
0: आपका स्वागत करते हैं जाधव जी।
1: मथुरा में मेरा बहुत दिन से कॉल लग गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी
0: जी, हमें भी खुशी हो रही है सर, आपकी कॉल आई, हमसे बात हो रही है आपकी। तो कैसे
1: जी
0: हैं आप?
1: हम ठीक है, आप कैसे सर जी?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं सर,
1: आपका मथुरा परिवार?
0: सब बढ़िया है सर।
1: जी, बिल्कुल
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं लगातार?
1: सुनते हैं। तो फिल्म
0: आज बता दीजिए क्या फरमाइश है
1: है मेरा गांव मेरा देश,
0: जी।
1: और जिसके बोले छोड़ दिया जाए क्या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, कुछ मित्रों के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: हाँ करिए।
1: हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। हमारे मित्र PSI राशेल के जी, किरण सिंधे जी, विठल पवार जी, कांताबाव रामगढ़े जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेड़गे जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटील दारुकर जी, धनंजय अपसरे जी, रमेश जाधव जी और उदय काळे जी, हम सभी सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं सर आप सभी के लिए ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: मैं ब्रिज होता, मैं गांव कुआं से भजनलाल बोल रहा था सर। सर
0: भजनलाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: कुशल है आप? स्वास्थ्य ठीक है आपका?
0: बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए, आप स्वस्थ हैं,
1: हम
0: अच्छे
1: ठीक है,
0: हैं?
1: प्रभु की कृपा से, बांके बिहारी कृपा से सब ठीक है, बिल्कुल मस्त है, तो कोई बहस नहीं है।
0: जी, गर्मी पड़ रही है
1: हाँ
0: काफी,
1: गर्मी
0: ध्यान
1: पड़ रही है, सर
0: रखिए।
1: निकल नहीं रहे कहीं पे भी, 11 बजे घर अंदर हो जाते हैं हम तो।
0: हाँ बिल्कुल
1: जो कुछ
0: बिल्कुल,
1: काम करना है 11 बजे तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर ही हो जाते हैं। हमारी बस्ती नहीं है, बात है, बहुत गर्मी ज्यादा है। हाँ
0: ज्यादा गर्मी है सर।
1: सर,
0: आज क्या फरमाइश रहेगी भजन लाल जी?
1: एक कुछ पुराना गाना है फिल्म का, साजन मेरा उस पार है, गंगा
0: गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का
1: गंगा
0: गाना
1: सरस्वती का। जी
0: सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत
1: सर, बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद सर कॉल उठाने के लिए सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार सर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी सर, नमस्ते
1: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
0: सर। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी,
1: प्रेम सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका।
0: थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आप बताएं आपका क्या हाल है।
0: मैं भी आपकी की तरह बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
1: जी,
0: जी सर, मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ, आकाशवाणी लखनऊ के में, और विविध भारती भोपाल के, इंदौर के, और आकाशवाणी मथुरा के कार्यक्रम हमें मोबाइल ऐप से स्पष्ट रूप से प्रसार मिलता है। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल ऐप का यही तो फायदा है सर।
0: जी काफी फायदा हुआ है, और श्रोता मतलब आकाशवाणी का नेटवर्क फिर से इतना बड़ा है कि यूँ समझिए कि हर पॉकेट में आकाशवाणी पहुंच चुका है। जी,
1: सही बात है।
0: वैसे अभी आकाशवाणी ने 90 साल पूरे किए हैं, उसके लिए आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, और हमें ऐसा ही आकाशवाणी का प्यार मिले, हम तो बस यही आशा करते रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हमारे श्रोताओं की बदौलत ही हुआ है सर। आगे भी ऐसे ही शुभकामनाएं आपकी मिलती रहें, यही उम्मीद है। आज बताइए क्या फरमाइश है कार्यक्रम में।
0: जी, फिल्म का नाम है खुदा गवाह, और गाने के बोले तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: जी थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार।
0: आदरणीय सारस्व साहब को मेरा सप्रेम बड़ा नमस्कार।
1: अपना परिचय दे दीजिए सर, बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका।
0: सर मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ, गांव उस पार से। साहब
1: आप स्वस्थ हैं?
0: हाँ ठीक है सर। आप बताएं आप कैसे हैं सर, आप हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: सब लोग अच्छे हैं, दुआएं हैं आप लोगों की।
0: चलो सर हमारे ऊपर भी आपकी और कन्हैया जी की कृपा होनी चाहिए, हम आप सब लोगों के ऊपर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या फरमाइश है कार्यक्रम में?
0: सर हमारी फरमाइश रहेगी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, चली रे चली गोरी पनिया वरन को चली।
1: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं यादराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
0: नमस्कार, मेरा भी कॉल उठाने के लिए आपको भी सर धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार
0: सर नमस्ते, कैसे हो आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आप कौन बोल रहे हैं?
0: सर मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अशोक यादव बोल रहा हूँ, अड़िंग से। सर
1: स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
0: धन्यवाद सर। और हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप बताएं, आपके यहाँ घर परिवार में सब ठीक है?
0: जी सर, मेरे घर परिवार और मेरे गांव में सभी लोग अच्छे हैं सर।
1: बहुत अच्छी बात है। क्या फरमाइश है आज कार्यक्रम में, बताएं?
0: सर फिल्म का नाम है मेरे हम सफर।
1: जी
0: राह पे किसी मोड़ पे चल ना देना मुझे छोड़ के, मेरे हम सफर ओ मेरे हम सफर।
1: आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: थैंक यू सर।

अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम अर्पण।

अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन सुनने के बाद कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आपको सुनवाते हैं। गायक कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर।

चंद्रु आत्मा और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और भजन। स्वर है किशोरी अमोनकर का।

उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अब पेश है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गीत बात और SMS। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। अपने सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आपकी फरमाइश के इस गीत के साथ।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने आपकी कसम फिल्म का गीत सुना। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था, धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी।

अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। अगले श्रोता हैं हमारे दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। आप हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटी।

हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। अगला संदेश हमें भेजा बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ के श्रोताओं ने, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का संदेश हमें मिला। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमसे जुड़े हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। आप हैं पलारी छत्तीसगढ़ के श्रोता नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। समडील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता और इनके सभी परिवारिक जन। टैगोर गार्डन नई दिल्ली के श्रोता हैं हमारे रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। आप हैं विजय सुरलकर रत्नमाला, आरती सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के श्रोताओं का संदेश हमें मिला है। आप हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। अगले श्रोता हैं दरियापुर बाभली महाराष्ट्र के गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। शेरीवड्डे रकोला से हैं अरुणा और बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। आप हैं शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। ये संदेश हमारे पास आया गांधी ग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा, पायल, जूली और जगदीश जौहरी का। आइए मित्रों आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा।

बाजार फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की। नगमा निगार थे मखदूम मोयुद्दीन और मौसिकार थे खय्याम। इस गज़ल को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी, पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें संदेश भेजा है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने। अगले फरमाइश करता है तिरुपति नगर नांदुरा के संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश, अनिकेत और सागर कटक। दिंडोरी नासिक से हैं विशाल गवली, सोनाली, समर्पण और भक्ति गवली। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया नारंग और इनके संगी साथी। अगला संदेश हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत का। आप हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोता दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र के श्रोताओं का संदेश हमें मिला। आप हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से हमसे जुड़े हैं जुनैद मुजावर, सबिहा मिखाइल और जैनब मुजावर। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल, बेबी वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता। अनूपपुर एमपी से हैं जयवंती केवट। अगले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पलारी के प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा। आप हैं वीरमगाम

रात के श्रोता अजीत भावसार, प्रमिला भावेश और सन्नी भावसार, और ये संदेश हमें भेजा है संजय कॉलोनी खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे ने। यह संदेश हमें मिला है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का, और ये श्रोता हैं हमारे गांव कलाना, तहसील भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान के विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए मित्रों, आपको सुनवाते हैं एक और फरमाइशी गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने खिलौना फिल्म का गीत सुना। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। अगले श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड के उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप हैं गार्डन रोड पैंठण से बाबा साहेब सरगर, ज्योति, शुभम और महेश सरगर। अगला संदेश हमें भेजा है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने डाबकी रोड अकोला से। कुंभार गली श्रीरामपुर के श्रोता हमसे जुड़े हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और रोहिणी दले। पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने। ये संदेश हमारे पास आया है गंज डुंडवारा यूपी से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान अंसारी का। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र के श्रोता प्रकाश रंभाड़े, भारती, जाह्नवी, वैष्णवी और हर्षल रंभाड़े। तेलंगाना भोंगिर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान, फरहान, सईमरा, आजमीन, गुड़िया। और आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर, राजस्थान के श्रोता। और ये संदेश हमें भेजा है राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, शुभ नारायण महतो, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया गुप्ता और संगीता पासवान ने। आइए मित्रों, आपको सुनवाते हैं गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम का ये अंतिम फरमाइशी गीत।

मुकेश की आवाज में आपने सफर फिल्म का गीत सुना। गीत इंदिवर ने लिखा था, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप खंवल। अगले श्रोता हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। आप हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। ये श्रोता हैं हमारे वाशिम महाराष्ट्र के विठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे। अगला संदेश हमें भेजा है महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी और स्वप्निल धाड़े ने। आप हैं मजनू का टीला दिल्ली के श्रोता कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा। सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। और आप हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू। इसी के साथ ही मित्रों, आज के गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल

0: के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विश्वंभर दयाल शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। आइए इनके स्वर में सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला ब्रज लोकगीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं विश्वंभर दयाल शर्मा के गाए कुछ लोकगीत, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से। आइए इन्हीं के स्वर में एक और लोकगीत आपको सुनवाते हैं।

0: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुने विश्वंभर दयाल शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय 1 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम

0: नियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूर संचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में दिन में 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोक। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे केबी लाल कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रस्तुत विनोद वार्ता रेल यात्रा। इसके अलावा आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी हमारे इसी कार्यक्रम में ले पाएंगे। दिन में 1:45 का समय रहता है फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तत्पश्चात अपराह्न 3 बजे समापन होगा हमारी इस पहली सभा का।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर। इसमें सबसे पहले युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युव वाणी। आज इस कार्यक्रम

कार्यक्रम में आज की बात के विषय होंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और हीट स्ट्रोक से बचाव। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आदित्य चूड़ामणि की वार्ता। विषय रहेगा ब्रज में जल एवं प्रकृति संरक्षण की विरासत। इसके अलावा आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी हमारे इसी कार्यक्रम में ले पाएंगे।

संध्या 6:15 पर किसान भाइयों के लिए हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक खेती। इसके अलावा चर्चा का विषय रहेगा खेत की तैयारी और हरी खाद का उपयोग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत द्वारा दी गई जानकारी, जिसका विषय रहेगा उर्वरकों का सही उपयोग। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर खजान सिंह से दिलीप यादव की बातचीत, जिसका विषय होगा धान की सीधी बिजाई और रोपाई में खरपतवार प्रबंधन। ये कार्यक्रम स्थल ध्वनियांकन पर आधारित होगा। इसके अलावा आप सुनेंगे कुछ ब्रज लोक गीत हमारे इसी कार्यक्रम में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकते हैं संध्या 6:45 पर, शाम 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में। आज आप सुनेंगे ब्रजभाषा रेखाचित्र ब्याह को बिचौलिया। रेखाचित्र प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप सुनेंगे नवरंग कार्यक्रम में रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक। आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे बी आजाद मथुराबी की लिखी नौटंकी श्रम। प्रस्तुति होगी टी एन शर्मा की। इसके अलावा रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अनंतलाल और साथियों का शहनाई वादन। इसके अलावा आप सुनेंगे पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति परक गीत।

मीना और साथियों के स्वर में आपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना। रचनाकार थे प्रेम धवन। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं रेशमा अग्रवाल।

जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। और इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमारी सभी प्यारी प्यारी सखियों को, सहेलियों को रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, आज की चर्चा के साथ। अगर बच्चे करेंगे काम तो कैसे होगा देश का नाम। जी हाँ बहनों, जो समय बच्चों का पढ़ने लिखने सीखने और अपना भविष्य बनाने का होता है और उसी समय पर बच्चे श्रम या मजदूरी करेंगे तो बहनों वो अपना भविष्य कब बनाएंगे, क्योंकि वर्तमान में पूरी दुनिया के लिए बाल श्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। विभिन्न देशों द्वारा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में दुनिया भर में बाल श्रम की क्रूरता को समाप्त करने के लिए हर साल 12 जून को यानी आज के ही दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बहनों, आखिर बाल श्रम क्या है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। असल में बहनों, बाल श्रम आम तौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक सीमित नहीं है।

यह एक वैश्विक घटना है। बहनों, आखिर बाल श्रम के कारण क्या है? क्यों बच्चे बाल श्रम के लिए जाते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं, उनमें आमतौर पर गरीबी पहला कारण है। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता पिता, यानी अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं माता पिता, ताकि परिवार की आय बढ़ सके, जैसे अन्य कारण हो सकते हैं। बहनों, अब बात आती है कि बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है। यानी इस दिवस का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में बाल श्रम की गंभीर समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना और बच्चों को उनके अधिकारों, शिक्षा और बेहतर बचपन का हक दिलाना है। यह दिन समाज को याद दिलाता है कि बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, न कि काम का बोझ। बाल श्रम रोकने के लिए बहनों कुछ प्रावधान भी बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम को खत्म करने और इसके मूल कारणों जैसे गरीबी और शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक नीतियां बनाता है। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारत सरकार द्वारा 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस तरह से बाल श्रम को हम सभी रोक सकते हैं। चर्चा के अंत में बहनों, इस वर्ष की यानी 2026 की विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की केंद्रीय थीम या नारा है, बाल श्रम को लाल कार्ड, यानी बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल और वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। यह अभियान बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करने, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और वयस्कों के लिए उचित आजीविका सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। इसीलिए हम सब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम रोकने का संकल्प लें और स्कूल जाने की उम्र में बच्चे मजदूरी ना करें, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। तभी साक्षर होगी भावी पीढ़ी, सुनहरा होगा देश का भविष्य।

0: बहनों, हम सभी रेल से यात्रा तो करते ही रहते हैं, और जब भी कोई यात्रा करते हैं तो उसके अनुभव भी कई तरह के हम सभी को होते रहते हैं। तो आज हम इसी क्रम में आपके लिए एक ऐसा ही अनुभव लेकर आए हैं वार्ता के माध्यम से, विनोद वार्ता के अंतर्गत, जिसका विषय है रेल यात्रा, जिसके वार्ताकार हैं केबी लाल कुलश्रेष्ठ।
1: रेल यात्रा के हमने तीन रूप जाने हैं, खेल यात्रा, मेल यात्रा और जेल यात्रा। आज से 50 साल पहले रेल यात्रा हमारे लिए खेल यात्रा हुआ करती थी। हम आसानी से अपनी इच्छा अनुसार कभी इस सीट पर तो कभी उस सीट पर, कभी खिड़की के सहारे और कभी लेटने के लिए ऊपर की पर्थ पर चढ़ जाते थे। न कोई प्रतिबंध, न कोई रुकावट, न कोई टोका टाकी। हम खिड़की के बाहर जाकर देखकर झांककर पेड़ों, घरों, खेतों आदि को पीछे की ओर भागते हुए देखा करते थे। चांद, सूरज, सितारे, ये सब हमारे साथ साथ आगे की ओर भागा करते थे। इस यात्रा से हमें अध्ययन में बड़ा लाभ हुआ। जब हमें इन द ट्रेन कविता कक्षा में पढ़ाई गई कि सारी भौतिक चीजें, पेड़, मकान आदि हमसे पीछे छूट जाते हैं, जबकि दिव्य वस्तुएं, आध्यात्मिक शक्तियां हमारे साथ साथ चलती हैं। सूरज, चांद हमारे साथ साथ दौड़ते हैं। हम आसानी से सारी कविता का भाव समझ गए थे। रेल यात्रा वास्तव में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। इसमें कभी कोई जाति, रंग, रूप का भेदभाव नहीं होता है। कोई भी नर नारी अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार कहीं भी बैठने में स्वतंत्र होता है। छुआछात आदि सभी कुरीतियां मिट जाती हैं। समय अवकाश होने से कुछ लोग किसी न किसी विषय पर मुखर होते हैं और फिर चल पड़ता है वार्तालाप का दौर। हर आदमी अपनी अपनी समझ सोच के अनुसार कभी सामाजिक, कभी राजनैतिक तो कभी धार्मिक विषय पर बेबाक टिप्पणी करने लगता है। कुछ लोग असहमत भी होते हैं पर उग्र नहीं, और इस प्रकार रेल डिब्बे में एक संसदीय वातावरण पैदा हो जाता है। कुछ ज्ञान, जानकारी में वृद्धि भी होती है। कुछ लोग एक दूसरे से इतने नजदीक आ जाते हैं कि वे आपस में फोन तथा पते का आदान प्रदान करते हैं। कुछ युवा एवं युवतियां भी एक दूसरे के सामीप्य में आते हैं, और प्रतिदिन सहयात्रियों के मिलन की परिणति का परिणाम जीवन साथी बनने में भी हुआ है। ये हमें मेल यात्रा के रूप में बहुत भाती थी, लेकिन धीमे धीमे समय बदला। रेल यात्रा का स्वरूप सुरसा की तरह विशाल होता गया। रेल का सुंदर शरीर पूरी तरह से मानव द्वारा आच्छादित कर लिया गया। छत से लेकर डिब्बे तक और गार्ड के डिब्बे से लेकर इंजन के मुख तक मानव ने ऐसी मानव श्रृंखला बना डाली कि बेचारी रेल का तो स्वरूप ही गायब हो गया। मानव ने इसे मधुमक्खियों का छत्ता बना दिया। जब हम प्लेटफार्म पर पहुंचे तो पूरा प्लेटफार्म, जहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं, बुरी तरह से ठूसम ठास हो रही थी। हमारी नजर दूर से रेल की छत की ओर गई। ऐसा लगा कि इस पर चढ़े यात्री कुतुब मीनार से कूदकर आत्महत्या की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग स्वयं छत पर चढ़ने से पहले अपने अबोध बच्चे को गेंद की तरह फेंक कर ऊपर चढ़े आदमी को लपका रहे थे। हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। अचानक हमें ये पंक्ति याद आई।

अरे भाग मानुष तन पावा, लेकिन मानव तूने इसे क्या कर डाला। हम उल्टे पैर प्लेटफार्म से निकलकर ऐसे भागे जैसे जेल से छूटा कोई कैदी। रेल यात्रा के संबंध में हमें अंग्रेजी के लेखक एजी गार्डिनर महोदय का ध्यान आता है कि वे रेल यात्रा करते करते किस प्रकार से महान दार्शनिक बन गए। एक बार लेखक लंदन से अपने कस्बे के लिए जाने वाली अंतिम गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। यात्रीगण स्टेशनों पर एक एक और दो दो करके उतरते चले गए। जब रेलगाड़ी लंदन से बाहरी घेरे को पार कर गई तो लेखक ने अनुभव किया कि वह डिब्बे में अकेला था। जब लेखक गाड़ी में अकेला रह गया, उसमें स्वतंत्रता की आनंददायी भावना थी, वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता था, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, उसने अकेलापन अनुभव किया। लेखक डिब्बे में अकेला रह गया था। लेखक को उस गाड़ी में अकेले होने से स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता था, जो रात में शोर मचाती हुई झटके देकर जो गाड़ी चल रही थी, हिलती हुई चल रही थी, ये बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंद देने वाली होती है। आप जो भी चाहे कर सकते हैं, आप जितनी जोर से चाहे अपने आप से बात कर सकते हैं और कोई भी आपकी बात नहीं सुन सकेगा। आप किसी भी बलवान व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हैं और उसके विरोधी प्रहार को सहे बिना सफलतापूर्वक उसे धूल चटा सकते हैं। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको नहीं देखेगा। आप बिना रोक टोक बिना बाधा के गा सकते हैं या दो कदम नाच सकते हैं या गोल्फ में गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं या फर्श पर कंचे का खेल खेल सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को विरोध का अवसर दिए बिना खिड़की खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार डिब्बे से किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। आप गद्दों पर पूरे पैर फैलाकर लेट सकते हैं। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के जब लेखक अपना अखबार पढ़ रहा था, एक मच्छर सहयात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया। उसे गुदगुदाने लगा। उसे ये अनुभव हुआ, उसने ये अनुभव किया कि वो अकेला नहीं था। जब मच्छर उसकी गर्दन पर बैठा, वह फिर से गुदगुदाया गया। मच्छर पुनः आया, वो लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया। अब लेखक क्रोधित होता, उसने मच्छर को मारने का निश्चय किया। लेखक ने हर प्रकार की चालाकी तथा तरकीब अपनाई, पर वह मच्छर को न मार सका। ऐसा लगा जैसे मच्छर उससे खेल खेल रहा था। लेखक ने सहयात्री मच्छर को पहले एक मामूली कीट पतंग सोचा था। जब वह मच्छर को न मार सका, वह शर्मिंदा हुआ। अब लेखक ने अपने साथी मच्छर को समझने का प्रयास किया। उसने देखा कि मच्छर में व्यक्तित्व तथा बुद्धि है। उसके हृदय में मच्छर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उसने निश्चय किया कि वह मनुष्य के नैतिक सम्मान को बचाने के लिए मच्छर पर सहानुभूति एवं करुणा का प्रयोग करेगा। लेखक ने मच्छर के प्रति एक प्रकार का स्नेह विकसित किया और उसने दूर का एक संबंध भी स्वीकार किया कि भाग्य ने उन दोनों को इस ग्रीष्म की अर्धरात्रि में सहयात्री बनाया। लेखक ने मच्छर में यह अनुभव किया कि मच्छर और यह लेखक, ये दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों एक कर्तव्य में सहभागी हैं। इस मूल तथ्य पर आधारित है कि वे दोनों नश्वर प्राणी हैं। वे दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। उनके जीवन का चमत्कार तथा रहस्य भी समान है, क्योंकि न तो मच्छर ही अपनी यात्रा के विषय में अनभिज्ञ है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी यात्रा के विषय में अनभिज्ञ है। इस प्रकार से लेखक एक दार्शनिक बन गया। एक बार हम दिल्ली की यात्रा के लिए प्लेटफार्म पर खड़े थे। हमें अपनी यात्रा साधारण डिब्बे से करनी थी। हमारी तथा हमारे जैसे करोड़ों लोगों की यही औकात है। सीटी देती हुई गाड़ी प्लेटफार्म पर रुकी। जिधर देखो दौड़ा दौड़ी मारा मारी और सीट पाने के लिए हर ओर लोग भाग रहे थे। जिधर देखो शयनयान, वातानुकूलित शयनयान। जब हमें जनरल डिब्बा यान के दर्शन नहीं हुए तो हम प्लेटफार्म पर खड़े होकर वातानुकूलित यान के पास खड़े हो गए। हम बाहर से उस वातानुकूलित यान में बैठे यात्रियों की ओर झांकने लगे। हमने सोचा कि नजदीक आकर शायद कोई शीतल झोंका हमारे शरीर को भी स्पर्श करे। संयोगवश हम ब्लू ब्लैक कोट तथा पेंट पहने हुए थे। इतने में एक सज्जन सपरिवार प्रकट हुए और बोले, भाई हम और आप दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, कृपया आप हमारे इन बच्चों को अपने वातानुकूलित यान में स्थान देकर दिल्ली पहुंचा दें।
मैं अवश्य कार्यवश इनके साथ नहीं जा रहा हूँ, प्लीज आप इतना अवश्य करेंगे। हमने कहा भाई हमें क्यों व्यर्थ में परेशान करते हो। वह बोले नहीं भाई, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें अवश्य ही दिल्ली अपने साथ वातानुकूलित स्थान में डिब्बे में स्थान दे देंगे। इतना कहकर वे सज्जन वहाँ से हटकर गेट पर जाकर खड़े हो गए। हम पशुपेश में थे कि हम कैसे उन्हें समझाएं कि हम डिब्बे के न तो टीटी हैं और न

0: रेल के कर्मचारी। इतने में गाड़ी चल दी और हमारा एकमात्र जनरल डिब्बा आया। हमने बड़ी मुश्किल से हैंडल पकड़ा और एक पैर से पायदान पर खड़े होकर यात्रा करने लगे। दूर से जब उन रेलवे कर्मचारी सज्जन ने हमें इस हीन दीन दशा में पायदान पर लटके हुए देखा, तो वे कभी आंख फाड़ कर प्लेटफार्म पर खड़े अपने बच्चों को देखते हैं, तो कभी हमें।
1: अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था रेल यात्रा, विनोद वार्ता के अंतर्गत। वार्ताकार थे केबी लाल कुलश्रेष्ठ। जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद व खुद खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। और इसी मुस्कुराहट के साथ सुनवाते हैं आपको यह प्यारा सा गीत।

हमारी सभी माता बहनें योग शब्द से तो परिचित ही होंगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि योग मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और संतुलन प्राप्त करने का एक समग्र जीवन मार्ग है। यह प्राचीन विज्ञान श्वास नियंत्रण, शारीरिक मुद्राओं और ध्यान के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। तो कहने का मतलब यही है कि बहनों, योग और ध्यान मन, शरीर और भावनाओं के बीच एक गहरा संतुलन बनाते हैं। यानी हम नियमित अभ्यास अगर योग का करेंगे तो इससे तनाव भी कम होता है और साथ ही साथ हम फिट तो रहते ही हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्टिसोल यानी तनाव का जो हार्मोन होता है उसका स्तर योग करने से गिरता है, और जो बहनों आज यानी वर्तमान में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी बात से आज के समय में टेंशन यानी तनाव बहुत जल्दी होता है, तो उनके लिए तो योग अति आवश्यक है। और बहनों, तनाव वाला जो हार्मोन का स्तर योग करने से गिरता है, और मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के रसायनों का स्राव भी बढ़ता है। यह मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए और योग के क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, तो बहनों हम आपको बताते हैं। सबसे पहले है तनाव और चिंता से मुक्ति। श्वास नियंत्रण यानी प्राणायाम से तंत्रिका तंत्र शांत होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो घबराहट होती है, चिंताएं होती हैं, यानी हम जो घबराते हैं, सोचते हैं कैसे करें, क्या होगा, ये सारी चिंताएं आपकी योग से दूर होती हैं। और अवसाद में सुधार, योग मस्तिष्क की रसायन क्षमता में सुधार करके उदासी को कम करता है और आपको खुश रखता है, फिट रखता है। मन मस्तिष्क का संतुलन, इसके अभ्यास से बहनों ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। क्या होता है कि सभी की ये शिकायत होती है जो शुरू में ध्यान करते हैं कि हमसे ध्यान लगता ही नहीं है, ध्यान होता नहीं है। तो आप जब बहनों नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी, और जो नकारात्मक विचार जो आते हैं वो साथ ही साथ दूर होते हैं। भावनात्मक संतुलन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यास, इसमें है सबसे पहला प्राणायाम, श्वास नियंत्रण यानी नाड़ी शोधन। आपने बहनों अनुलोम विलोम का नाम तो सुना ही होगा, तो इससे क्या फायदा होता है, यह मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करके मन को स्थिर और शांत करता है। इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम, इसके कंपन से ही मन का तनाव और गुस्सा तुरंत कम होता है। जब कभी बहनों आपको लगे कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको शांत रहना है, इसके बाद भी अगर आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, उससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। योगासन, बालासन और शवासन शरीर को विश्राम देते हैं और हमारी थकान को मिटाते हैं। सेतु बंधासन और भुजंगासन, ये छाती और रीढ़ को खोलकर ऊर्जा का संचार करते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है बहनों कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल यानी आत्मविश्वास कम होता है वह बढ़ता है। साथ ही साथ ध्यान यानी माइंडफुलनेस वर्तमान में रहने की कला सिखाता है, जिससे भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। गाइड मेडिटेशन शुरुआती लोगों के लिए यह मानसिक शांति और सकारात्मकता लाने का बेहतरीन उपाय है। तो बहनों, हमें योग करने से कितने फायदे मिलते हैं, तो क्यों ना हम इस योग को अपनाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। और बहनों, अब समय हो जा रहा है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको कुछ खास टिप्स भी बताते हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, इस समय कभी ज्यादा गर्मी हो रही है, कभी एकदम से आंधी तूफान बारिश, तो बहनों यह कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो ठंडे पानी से हमारे गले पर असर आ रहा है, हमें जुकाम खांसी हो रहा है। तो बहनों, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की यह जरूरत है कि चाहे मौसम कैसा भी है, उतार चढ़ाव पर है, आपको ठंडा पानी यानी फ्रिज का एकदम से नहीं।

पीना है। पानी अगर पीना है ठंडा, लगता है कि पानी से, ठंडे पानी के बिना प्यास नहीं बुझती है, तो बहनों आप मटके का पानी का सेवन अधिक से अधिक करें और बच्चों को भी इसी का सेवन कराएं। बाहर धूप में से आकर एकदम से ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज का बर्फ का सेवन ना करें, एसी में कूलर में एकदम से ना बैठें, और जब भी घर से बाहर निकलें अपने साथ छाता लेकर जाएं, अपने शरीर को ढककर जाएं, चश्मा लगा कर जाएं बहनों, साथ में पानी की एक बोतल आप अवश्य रखें। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा खान पान का भी ध्यान रखना होगा, ताजी खाना खाना है, हरी सब्जियों का सेवन करना है, और जो मौसमी फल हैं जैसे खरबूजा, तरबूजा, लीची है, आम है, इस तरह के फलों का सेवन अधिक से अधिक करना है। अगर आपको लगता है कि इससे हमारी भूख नहीं मिट रही है, तो बहनों सबसे बढ़िया आपको मैं बताती हूँ आहार है सत्तू, यानी चने का सत्तू है, जौ का सत्तू है, गेहूं का है। आप इसको, इसमें थोड़ा अगर मीठा खाते हैं तो मीठा डालकर, और अगर जिसको डायबिटीज है तो नमक काली मिर्च डालकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहनों आप बदलते मौसम में फिट रहें और अपने परिवार को भी फिट रखें। तो चलते चलते बहनों कुछ लाइनें याद आ रही हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ दीजिए अनुमति रेशमा अग्रवाल को, नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थी वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया रेशमा अग्रवाल ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जूली फिल्म के लिए अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश काजल फिल्म से है। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। साहिर लुधियानवी के गीत को संगीत से संवारा है रवि ने।

0: in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The Intermeteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल

0: जनरल मनोज सिन्हा सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर

0: प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24,00,000 रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा।

0: दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और

0: अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
1: जी
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: کیوں نہ اپنائیں خوشیاں اپنا کر منودرپن۔ کال کریں 844-844-0632 پر اور پائیں NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे, आज संध्या 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे आदित्य चूड़ामणि द्वारा प्रस्तुत वार्ता, जिसका शीर्षक रहेगा ब्रज में जल एवं प्रकृति संरक्षण की विरासत। संध्या 6:15 पर किसान भाइयों के लिए हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर

रविंद्र कुमार राजपूत द्वारा दी गई जानकारी, उर्वरकों का सही उपयोग। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर खजान सिंह से दिलीप यादव की बातचीत, जिसका विषय रहेगा धान की सीधी बुवाई और रोपाई में खरपतवार नियंत्रण। ये कार्यक्रम स्थल ध्वनियांकन पर आधारित होगा।

शाम 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रजभाषा रेखाचित्र ब्याह को बिचौलिया। रेखाचित्र प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप नवरंग कार्यक्रम में सुन सकते हैं रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे बी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी श्रम, प्रस्तुति टीएन शर्मा की रहेगी। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे अनंतलाल और साथियों का शहनाई वादन और पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराहन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का दैनिक कार्यक्रम युव वाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को अनुराग पांडे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आज 12 जून जी हाँ, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे हैं। ये बात सही है कि जो हमारे देश के नौनिहाल हैं, उन पर ही आने वाले इस देश का जो दारोमदार है, उन्हीं के कंधों पर है। ये जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है कि वो इस देश को किस दिशा में और किस दशा में लाना चाहते हैं। उनमें से हमारे देश के नौनिहालों में से कुछ हमारे वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ खिलाड़ी बनेंगे, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जीवन के जाएंगे। तो सही समय पर जब उनकी परवरिश होगी, उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी और साथ ही साथ जो उनकी शिक्षा है वो उनको मिलेगी, वो भी एक खुशी वाले माहौल में, एक आनंद वाले माहौल में, तो वो एक ऐसा वहाँ से व्यक्तित्व का विकास लेके अपने घर से, अपने समाज से, अपने परिवार से चलेंगे कि वो देश के लिए एक एक एक मानव संसाधन के रूप में रहेंगे, एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करेंगे। लेकिन कहते हैं कि एक कविता है कि छोटे छोटे हाथों में बड़े बड़े बोझ, कूड़े के ढेर में रहे जिंदगी को खोज। सुबह सवेरे निकल पड़ते हैं ले हाथों में बस्ता, किताबें नहीं हैं उसमें फिर भी ढूंढे जीने का रास्ता। निभा रहे भूमिका गिद्ध की, मरते जीते रोज, कूड़े के ढेर में रहे जिंदगी खोज। ठेले पे हाथ बटा बाप का, भूले बचपन अपना, तुम ही कहो क्या हो सकता है उन आँखों में कोई सपना। उन नन्ही आँखों के सपने हो रहे जमींदोज, उस ठेले के चाकों में रहे जिंदगी को खोज। छोटे छोटे हाथों में बड़े बड़े बोझ। जी हाँ, आपने देखा हुआ कि हम अक्सर कहीं अपनी दोपहिया वाहन की जब रिपेयरिंग कराने जाते हैं उस या कुछ ऐसी जगह जाते हैं, देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर के और इस तरह से काम कर रहे होते हैं, या फिर हम देखते हैं अक्सर होटलों पर, ढाबे में छोटे छोटे बच्चे चाय ला रहे होते हैं या जीवा बूजी लाया और इस तरह से सेवा कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तब लगता है कि ये जो ये बच्चे हैं, ये वास्तव में बच्चे नहीं, अपने घर के बहुत बड़े हैं और वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो अक्सर कोई बड़ा निभाता है। साथ ही साथ अफसोस होता है इस बात का कि हम क्या इनको क्या करें इनके लिए कि ये इस इनकी जो स्थिति है वो बदले। साथ ही साथ जब ये चिंतन चल रहा होता है दिमाग में कि हम अपने स्तर पर क्या कोशिश कर सकते हैं, जी हाँ, कोशिश ये कि वो चीज़ें उसके हाथ में हम किताबें दे सकें, उसके हाथ में हम खेल कूद का सामान दे सकें। साथ ही साथ ये तभी संभव होगा जब घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसके कंधों पर ना आए। कई बार परिवार की स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, आर्थिक स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और बच्चों के कंधों पर बोझ आ जाता है। तो ऐसे में समाज या हम बड़े जो हैं वो क्या करें कि उस दौर में बच्चे अपना जीवन जी सकें, उनका जो बचपन है वो उनको मिले। और कह सकते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम प्रयास करें कि जो भी हमारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कारखानों में काम कर रहे हैं या इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको रोका जा सके ताकि उनका जीवन जो है सही दिशा में आगे बढ़े।

जी हाँ, बात करते हैं इस बात को लेकर कि हम संजीदा हों कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो भविष्य हैं, वो अच्छे इस माहौल में अपनी परवरिश लें कि वो देश के लिए कल को काम आ सकें, अपने भी सपने साकार करें और देश को भी उनसे एक नई दिशा मिले और

ऊंचे ऊंचे वो अपने जीवन में आयाम जो उनके हैं वो उनको छुए। अब बात करते हैं इसके आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों, वो है हीट स्ट्रोक। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि आज का जो मौसम चल रहा है वो कभी आप देखते हैं आंधी है, और कई विभाग द्वारा हमको अलर्ट की मैसेजेस मिल रहे हैं कि भाई आंधी आ सकती है, बारिश हो सकती है, या कभी हम दिन में देखते हैं कि इतनी गर्मी पड़ती है जिससे आप महसूस करते हैं कि खासी गर्मी है और काम करना मुश्किल हो रहा है। और कई बार हमको कई संदेशों के माध्यम से ये जानकारी दी जाती है कि हम हीट स्ट्रोक से बचें, क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, ताकि पानी पीते रहें, और हमारे जैसे नारियल पानी है, हमारे धूप में निकलने से पहले हम किसी तरीके से का खाली पेट न रहें, पानी पिएं, और सत्तू का सेवन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे ऐसे हमारे खरबूजा है, तरबूजा है, या खीरा, इस तरह की सलाद जो आपको बॉडी में जो आपका बेस की जो वैल्यू है उसको बढ़ाती हो, तो वो चीज़ें अगर हम लेंगे, शीतल पेय पदार्थ लेते हैं, हम शरबत का सेवन कर सकते हैं, किसी न किसी माध्यम से पानी पी मतलब पानी के रूप में, अगर हम सीधा सादा पानी नहीं पी पा रहे हैं तो 3 से 4 लीटर पानी अमूमन पीना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप शरबत लें, आप छाछ लें, लस्सी लें, किसी न किसी माध्यम से तरल पदार्थ शरीर में जाने चाहिए, जिससे कि, और सलाद में आप प्याज का सेवन कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ का सेवन कर सकते हैं जो आपको लू से बचाएं। तो हम अपना ध्यान रखें, धूप में अगर काम ना हो तो परहेज़ करें निकलने से, और जब धूप हल्की हो शाम को या सुबह अपने ज़रूरत के कामों को निपटाने का प्रयास करें। ब्रज में जल और प्रकृति संरक्षण की जो ये विरासत है उसको हम संभालें, ये हमारा दायित्व बनता है।

का महीना अपने पूरे चरम पर है। सूरज की तपिश, झुलसा देने वाली लू और आसमान से बरसती आग ने न केवल जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि हमारी प्रकृति को भी मानो सुखाकर रख दिया है। हम जिस ब्रजमंडल में निवास करते हैं, वह कभी अपने सघन वनों, शीतल कुंडों और सदानीरा यमुना के लिए विश्व भर में विख्यात था, लेकिन आज यही क्षेत्र एक अत्यंत गंभीर जल संकट और अप्रत्याशित तापमान वृद्धि का सामना कर रहा है। आज जब हम दोपहर में घर से बाहर निकलते हैं, तो यह महसूस होता है कि मौसम का मिजाज कितना उग्र हो चुका है। यह केवल एक मौसम का बदलाव नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह प्रकृति का वह अलार्म है जो हमें बता रहा है कि हमने अपने पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ की है, उसके परिणाम अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अगर हम ब्रज के इतिहास और यहाँ की संस्कृति के पन्नों को पलटें, तो पाएंगे कि जल संरक्षण केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि यहाँ की जीवन शैली और आध्यात्म का एक अत्यंत अभिन्न अंग रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की मिट्टी और जलवायु को बहुत गहराई से समझा था। इसी समझ के परिणाम स्वरूप यहाँ सैकड़ों कुंडों का निर्माण हुआ। राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, यह सूची बहुत लंबी है। हम इन्हें केवल आस्था और तीर्थ के केंद्र के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उत्कृष्ट और प्राचीन मॉडल थे। इन कुंडों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि बरसात का सारा पानी ढलान के माध्यम से इनमें आकर जमा हो जाए। यह पानी न केवल साल भर पीने और सिंचाई के काम आता था, बल्कि जमीन के अंदर रिस रिस कर भूजल स्तर को भी बनाए रखता था। जल को यहां देवता माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना वास्तव में प्रकृति और उसके संसाधनों के संरक्षण का ही तो संदेश था। उन्होंने इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन और वनों की पूजा करने को कहा, क्योंकि वे जानते थे कि पेड़ और पहाड़ ही बादलों को आकर्षित करते हैं और जल का संरक्षण करते हैं। लेकिन आज हमने उस संदेश को भुला दिया है। विकास की अंधी दौड़, शहरीकरण और कंक्रीट के फैलते जंगलों ने हमारे इस पारंपरिक जल तंत्र

कमर तोड़ दी है। आज स्थिति यह है कि हमारा भूजल स्तर यानी जमीन के नीचे का पानी पाताल की ओर जा रहा है। गर्मियों के आते ही हैंडपंप हवा फेंकने लगते हैं, बोरवेल सूख जाते हैं और जो यमुना कभी ब्रज की जीवन रेखा हुआ करती थी उसका जलस्तर इस मौसम में इतना घट जाता है कि उसे देखकर मन व्यथित हो उठता है। तापमान में यह जो लगातार वृद्धि हो रही है इसका एक बहुत बड़ा कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। ब्रज के वे प्राचीन वन जिनमें कभी कदम, तमाल, पीपल, पिलखन और बरगद की ठंडी घनी छांव हुआ करती थी अब तेजी से लुप्त हो रहे हैं। कंक्रीट की सड़कें और इमारतें दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती हैं और रात को उसे वापस वायुमंडल में छोड़ती हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। यही कारण है कि अब रातें भी उतनी ठंडी नहीं होती जितनी कुछ दशक पहले हुआ करती थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम केवल मूक दर्शक बनकर इस विनाश को देखते रहें? क्या हम केवल मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर चर्चा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जून का यह महीना केवल गर्मी सहने या एसी कूलर में बैठकर शिकायतें करने का नहीं है, बल्कि यह आने वाले मॉनसून की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। कुछ ही हफ्तों में जब हवाओं का रुख बदलेगा तो बादल फिर से ब्रज की धरती पर मेहरबान होंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम उस अमृत रूपी जल को सहेजने के लिए तैयार हैं? सबसे पहला और सबसे ठोस कदम जो हमें आज इसी वक्त उठाना है वह है वर्षा जल संचयन। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे घरों, छतों और आंगनों में गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद व्यर्थ बहकर नालियों में न जाए। इसे वापस जमीन के अंदर पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए बहुत बड़ी या महंगी तकनीक की आवश्यकता नहीं है। घरों के आसपास छोटे छोटे सोखता गड्ढे जिन्हें सोक पिट्स कहा जाता है बनाए जा सकते हैं। छतों के पानी को पाइप के जरिए जमीन के नीचे गड्ढे या पुराने सूखे हुए बोरवेल में उतारा जा सकता है। सोचिए, अगर हर घर अपनी छत का पानी जमीन में वापस डालने लगे तो एक ही मानसून में हमारे शहर का भूजल स्तर कितना ऊपर आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जल निकासी तंत्र की सफाई। हम अक्सर देखते हैं कि मॉनसून की पहली ही बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी नालियों में पॉलीथिन और प्लास्टिक की बोतलों का कचरा जमा हो जाता है। मॉनसून आने से पहले यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने मोहल्ले की नालियों और आसपास के प्राकृतिक ढलानों को साफ करें। अगर बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के मिट्टी वाले क्षेत्रों, तालाबों और कुंडों तक पहुंचेगा तभी वह जमीन में रिसेगा। कचरे से भरी नालियां केवल जलभराव, मच्छरों और बीमारियों को जन्म देती हैं। तीसरा और सबसे दूरगामी तैयारी है वृक्षारोपण। लेकिन ध्यान रहे, इस मानसून हमें केवल पौधे लगाने की रस्म अदायगी नहीं करनी है, हमें ब्रज के स्थानीय पेड़ों को वापस लाना है। हम अक्सर दिखावे के लिए विदेशी या सजावटी पौधे लगा देते हैं जो न तो ठीक से छाव देते हैं और न ही स्थानीय पक्षियों के काम आते हैं। इस बार जब बारिश शुरू हो तो अपनी कॉलोनियों में खाली जमीनों पर और सड़कों के किनारे नीम, पीपल, बरगद, आम और कदम्ब के पौधे रोपें। इन पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं और बारिश के पानी को जमीन की गहराई तक ले जाने में मदद करते हैं। एक पूर्ण विकसित पीपल या बरगद का पेड़ अपने आसपास के तापमान को कई डिग्री तक कम कर सकता है। यही हमारे भविष्य के असली एयर कंडीशनर हैं। जल और जंगल के बिना ब्रज की कल्पना बिल्कुल अधूरी है। प्रकृति अपना धर्म निभाते हुए मैं हर साल मानसून के रूप में नया जीवनदान देती है, लेकिन उस दान को सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। पानी की एक बूंद को बनने में प्रकृति को सैकड़ों साल लगते हैं और हम उसे पल भर में व्यर्थ कर देते हैं। आइए हम सब मिलकर यह तय करें कि इस बार जब बारिश की पहली बूंद ब्रज की प्यासी धरती पर गिरे तो वह नालियों में बहकर बर्बाद ना हो। हम उसे सहेजेंगे, जमीन को वापस लौटाएंगे और नए पौधे लगाकर अपनी धरती का श्रृंगार करेंगे। प्रकृति के इस चक्र को समझना ही जीवन का सच्चा अर्थ है, क्योंकि यह एक शाश्वत सत्य है। जल है तो कल है और सुरक्षित जल ही हमारे ब्रज, हमारी संस्कृति।

0: और हमारे भविष्य का असली आधार है।
1: साथियों, अभी आदित्य चूड़ामणि से आपने सुनी ये जानकारी, ये वार्ता, ब्रज में जल एवं प्रकृति संरक्षण की विरासत। जी हाँ, बात बहुत गंभीर भी थी और कह सकते हैं प्रासंगिक भी थी। आज जिस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से हम पानी का दोहन कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा, इसका जो दुष्परिणाम है वो निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। कारण ये है कि हम देखते हैं कि कई जगह पर समरसीबल बोरवेल लग चुके हैं और पानी की लोग बस बटन दबाया और टंकी भर जाती है और उसका ओवरफ्लो का जो पाइप है वो बहुत काफ़ी देर तक फैलता रहता है और आसपास के लोग जो गुजरते हैं वो भी कई बार अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं और पानी यूं ही व्यर्थ होता रहता है। कई बार शहरों से गुजरते देखते हैं कि नल की टोटी टूट गई है, पानी फैल रहा है और सीधा वो पेय जल पीने के योग्य जो पानी है वो सीधा नाली में गिर रहा है या व्यर्थ जा रहा है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं और हम आगे देखते हैं कि वो बर्बाद हो रहा है, या हम देखते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन के द्वारा या हमारे आरओ के द्वारा या इस तरह की चीज़ों के द्वारा जहाँ थोड़े से पानी से काम चल सकता था वहाँ बहुत सारा पानी फैला रहे हैं। कहीं हम देखते हैं डेयरी में जाकर कि जो पशु हमारे इस किसान या भाई तो या हमारे जो डेयरी संचालक हैं वो उस वहाँ पर भी हम देखते हैं कई जगह पानी व्यर्थ यूँ ही जाया हो रहा है। तो पानी को बचाएं, उसका जो जो उसका स्रोत है उसका उसका संरक्षण हो और हम समझें कि जिस धीरे धीरे जो हमारा भूगर्भ जो हमारे जो जल स्तर है भूगर्भ का वो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा उसमें जो पीने के योग्य जो पानी वो हमें नहीं मिलेगा, हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और हम ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो अभी आपने हमारे साथियों ने सुना उसको हमको पालन करना चाहिए ताकि पानी है तो हम सुरक्षित हैं और हम अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं।

साथियों, आज के इस युवाणी के अंक में हम चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, हमारे घर से निकलने वाला जो भी कूड़ा है, जिसे भी, उसका हम प्रबंधन उचित रूप से करें। अपने आसपास, अपने घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और ध्यान रखें हीट स्ट्रोक का। जी हाँ, मौसम प्रतिकूल है, बदलता हुआ मौसम है, और घर से निकलें तो पानी की मात्रा, खाने की मात्रा संतुलित रूप से हमारे शरीर में होनी चाहिए। साथ ही साथ मौसम के अनुसार जो चीज़ें हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। इसी संदेश के साथ आज की इस युवाणी के अंक को यहीं करते हैं संपन्न। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:15 पर किसान भाई और बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। जी हाँ, इसमें आज चर्चा का विषय रहेगा मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक खेती। इस विषय पर चर्चा, साथ ही खेत की तैयारी और हरी खाद का उपयोग करें, इस विषय पर रहेगी आज की चर्चा। डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत रहेंगे आज के विशेषज्ञ, जो आपको देंगे जानकारी उर्वरकों के सही उपयोग पर। साथ ही लेंगे कार्यक्रम में आनंद आज आप ब्रज लोकगीतों का। कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं आपके बीच दिलीप यादव।

संत 6:45 पर आप सुनेंगे संध्या वंदन कार्यक्रम में गैर फिल्मी भक्ति संगीत और फिल्मी भक्ति पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन समय संध्या 6:45। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर उमेश चंद शर्मा से रेखा चित्र ब्याह को बिचौलिया। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा, करेंगे हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 94122 25575।

संध्या 8 बजे जी हाँ, आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम सुना जा सकेगा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे बी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी श्रम, प्रस्तुति TN शर्मा की रहेगी। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे अनंत लाल और साथी। आप सुनेंगे इनसे शहनाई वादन जो राग मधुकोष में निबद्ध रहेगा। साथ ही पंडित CR व्यास का ख्याल गायन भी राग छाया नेट में निबद्ध रहेगा। आप सुन सकते हैं ये कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं दिलीप यादव।

0: उनको समावेश रहे। जीवामृत, घन जीवामृत, गौ आधारित खेती, गौमूत्र आधारित खेती, वनस्पति से कीटनाशक और उर्वरक बनाए के अपनी खेती में प्रयोग करने वाली खेती, ये प्राकृतिक खेती के स्वरूप हैं। तो निश्चित रूप से जो रासायनिक तत्व हैं उनको प्रयोग किए बिना प्राकृतिक तत्वों को प्रयोग करके जो खेती करी जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा मशीनीकरण की ज़रूरत ना हो, जीव जंतु कीट पतंगा सबको स्थान मिले और बाकी संग संग ही हमारे किसान भैया को भी अच्छो सेहतमंद उत्पाद मिले, ऐसी जो खेती है वो प्राकृतिक खेती की श्रेणी में अब है। तो अब चूंकि देखो बीमारी इतनी बढ़ गई है कि गांवन में वो मालूम पड़ी हर तीसरे घर में कई तरह की बीमारी इनके लोग शिकार हैं। नए नए बालकन को हार्ट अटैक की समस्या है रही है। ये सब जो अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकन को प्रयोग है, वाकई चलते ये समस्या पैदा होने लगी है। और इन समस्याओं को अगर हमें नियंत्रित करना है तो कम से कम अपने उपयोग और उपभोग के लिया हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो भी अनाज बोवें या सब्जी वाली फसल लगावें, कम से कम अपनी ज़रूरत के लायक तो ऐसा लगावें जो शुद्ध हो, सात्विक हो, प्राकृतिक हो। तो प्राकृतिक को खेती की तरफ बढ़ना है और यहाँ पे सरकार को भी जोर है। शुरुआत जैविक खेती के माध्यम से कर सकें, यहाँ पे भी सरकारी जो संस्थान है, जवाहर बाग हमारे मथुरा में उद्यान विभाग को कार्यालय है, बाकी बगल में ही कृषि विभाग को कार्यालय है। हर ब्लॉक स्तर पे कृषि रक्षा इकाई है, वहाँ पे भी उचित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो निश्चित रूप से आप अगर ये जानकारी लेके आगे बढ़ोगे तो आपको लाभ होगा। तो किसान भैया देखो बात प्राकृतिक खेती की भई, रासायनिक तत्वों की भई, अब बात यह आवे कि रासायनिक तत्व हम डालें तो हैं लेकिन बिना मिट्टी की जांच कराई डालें, हमें कौन सी चीज़ की कितनी ज़रूरत है ये जानकारी है वो बड़ा ज़रूरी है। वह के अनुपात में अगर हम उर्वरक डालेंगे तो एक तो हमारा जो खर्चा है यानी कि हमारी जेब से जो पैसा जाए वो भी एक सीमित मात्रा में खर्च होगा और फसल की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होगी। तो हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता उर्वरकों का सही उपयोग विषय पे। वार्ताकार हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत।
1: देखिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन का जीवांश यानी घूरे की मात्रा बढ़ानी है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताऊंगा, आपके मथुरा जिले के जितने सैंपल आए हैं, करीब करीब मैंने 12-14 हजार सैंपल टेस्ट कर दिए हैं, 90% नमूने ऐसे हैं जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.3% से लेके 0.35%, मतलब आधे से भी कम है। जमीन इतनी हल्की हो चुकी है और वो जीवन का आधार है, पौधे की जीवन का आधार है, मिट्टी की उर्वरता का आधार है, वो नहीं है। इसीलिए आप नेक पानी भर जाए तो आपकी फसल सड़ने लगती है, सूखा आ जाए तो पहले एकदम सूखने लगती है, उसके बाद तुषार पड़ जाए तो बहुत जल्दी लोट लगा जाती है। तो जब जीवन के आधार, मतलब बेस ही उसका नहीं है जो सामान्य मिट्टी का होना चाहिए जिस पर हम खेती करते हैं, 0.5% से ऊपर होना चाहिए, 0.8% तक, जिसमें आप क्या फसल करते हो, जितनी सीरियल क्रॉप्स, दलहनी तिलहनी अनाज की फसलें, ठीक, और 0.8% से ऊपर होना चाहिए उनमें आप सब्जियां उगाओगे। सब्जियां कौन सी, जैसे आलू है, तरोई है, भिंडी है, परवल है, करेला है, जड़ वाली है, तने वाली है, फूल वाली है, पत्ती वाली है, यही तो सब्जियां हैं। उगाओगे तभी आपको सुगंध और स्वाद मिलेगा। केवल रसायन डालने से, केवल केमिकल का घोल छिड़कने से पैदावार तो आप कर लोगे लेकिन उसकी गुणवत्ता मेंटेन नहीं होती है। फिर आप कहोगे धनिया हमने साहब काटा तो था चक्कू से लेकिन खुशबू है ही नहीं। जब खुशबू नहीं, जो हमने 6 गुना रसायन ज़्यादा स्प्रे किया ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो रसायन कहाँ गया, हमारी सब्जी में आया, उत्पाद में आया और हमने खाया। वो जो रसायन था कितना, 1 गुने की तो ज़रूरत थी, हमने कितना सड़क दिया, 6 गुना। क्यों, गोभी का ऑफ सीजन की मैं बात कर लूँ, जो गोभी का किसान है ऑफ सीजन की खेती करता है, यानी सीजन से पहले या सीजन के बाद वो 22 स्प्रे करता है, कहता है 60 दिन की फसल हो गई बाबूजी, और हमने कर दिए इसमें हर तीसरे दिन, यानी तीसरे दिन का मतलब हिंदी में बात कर लें तो 72 घंटे पे स्प्रे मारता है, तब तो जो हमने कीड़ों से बचा पाई, और 250 ग्राम का फूल है सीजन पे।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनबे बारे सब किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, मौसम तरह तरह के रंग बदल रहे हुए हैं, और चूंकि अब जो सीजन है बरसात को सीजन शुरू है बेवारो है, या से पहले हमारी जो मुख्य चीज है वो है मिट्टी। तो मिट्टी की सेहत को आपको अगर ठीक रखना है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान धरना पड़े। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक खेती पे। तो किसान भैया, प्राकृतिक खेती वाकू कहो जाए जामे प्रकृति के जे तत्व हैं

होता है जई फूल 1.5 किलो का, तो आप बताओ इस ये आपको 80 रुपये किलो नहीं बेचेंगे तो क्या भाव बेचेंगे? और फिर उसने प्रोटेक्शन कितना किया कीड़े से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए, और ऑफ सीजन का ग्रोथ बढ़ाने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर भी दिया होगा, हार्मोन्स उसमें डाले होंगे, और वही हमारे पास जाते हैं, हमारे शरीर को इरिटेट करते हैं, धीरे धीरे हम इतना जहर खा जाते हैं एक साल में, अगर वो सब निकाल लिया जाए हमारे अनाज से, हमारे भोजन से, और इकट्ठा खिला दिया जाए किसी एक आदमी को, तो वो 3 बार मरेगा। या ये समझ लो कि उतना जहर एक आदमी के खाने से साल भर का निकाल लिया जाए और 3 आदमी को खिला दिया जाए, तीनों आदमी ऑन स्पॉट मर जाएंगे। हम धीरे धीरे स्लो पॉइजन के तौर पे सब्जियों में, फलों में, अनाजों में, भोजन में इतना जहर खा जाते हैं, इतना अंधाधुंध स्प्रे से जाता है, केवल दवाइयों से नहीं जाता है, रासायनिक उर्वरक ये भी हमारे लिए उर्वरक रासायनिक तो है, जहर है। उसके बाद जितना इंसेक्टिसाइड है, कीड़ों को मारने की दवाइयाँ, पेस्टिसाइड है, उसके बाद हर्बिसाइड, खरपतवार नाशी। अभी धान लगाएंगे भाई, बताना कौन सी दवाई है बढ़िया, एक ही बार में मोथा और वो समा और कुछ भी साफ हो जाए, केवल क्या बचे सिलेक्टिव, कौन सा धान। तो किसान ये करना चाहता है, तो खुरपी तो है ही नहीं किसान के पास, खुरपी तो बची नहीं है क्योंकि वो तो आजकल दवाइयाँ आ गई, स्प्रे कर दो, और आजकल ठेके पे स्प्रे वाला सिस्टम भी आ गया है, मोटरसाइकिल यहाँ भी चालू हो गए, चालू है वो, तो वो किसान नहीं जाएगा, गर्मी कौन जाए, दवाई दे दो, पानी बता दो, और वो आते हैं तीन तीन बाइक पे और मशीन लाए और फटाफट घोला, और मुझे लग रहा है 1 एकड़ वो 10 मिनट में 3 आदमी मार दें, इधर से गए और उधर से आए। ठीक है, आपने तुरंत 250 300 जो भी आपका रेट होगा बीघे के साथ, नहीं करीब करीब 300-400 रुपये एकड़ ले लें वो, तो ये सिस्टम हो गया। तो भैया आप किसान हो, आप अपनी जो कमाई है, मजदूरी है, वो मशीन वालों को दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी वालों को दे रहे हो। आजकल ड्रोन सिस्टम आ गया है, ड्रोन पहले शादी ब्याह में चला था, तब लोगों ने जाना था कि साहब उड़ती चिड़िया है, अब सब जान गए ड्रोन क्या है, फोटोग्राफी का सिस्टम है। अब वो ड्रोन जब ये बात आई तो बोले स्प्रे में इसको ऐसे कैसे यूज किया जाए, तो निक थोड़ा बड़ा हो गया है, आपके किसान भाइयों ने लिया हुआ है ड्रोन स्प्रे के लिए चल रहा है, वो भी 250 रुपये 300 रुपये जैसी आपकी उपयोगिता है, 400 रुपये एकड़ तक में स्प्रे करते हैं, और 1 एकड़ 10 मिनट में स्प्रे कर देता है, मात्र 10 लीटर पानी लगता है, और एक दिन में वो ड्रोन उसकी जितनी बैट तीनों सेट अगर बैटरियों की चार्ज हो जाए और एक जगह उसको एरिया मिल जाए तो 70-80 एकड़ स्प्रे कर देता है, लेकिन उसको क्लस्टर मिलता नहीं है, 5 एकड़ यहाँ मिला, पता लगा 3 किलोमीटर बाद फिर वो पैक करे और उठाए और वहाँ ले जाए, तो इसलिए उसकी क्षमता कम हो पाती है। नहीं तो ड्रोन सिस्टम बड़े फार्मर्स के लिए अच्छा है, स्प्रे के लिए अच्छा इसलिए है, फसल को नुकसान नहीं होता है, आप पिट्ठू मशीन से छिड़कते हैं, 10 कदम रखते तो एक कदम पौधे को जरूर तोड़ देगा, कहीं ना कहीं चाहे आप गिरोगे गलती से कुचल जाएगा, तो वो उभरने में ही लगा लेता है 15 दिन, तो एक तो फसल नहीं टूटती है, दूसरा उसका इतना फाइन स्प्रे होता है कि डायरेक्ट पत्ती के जो रंध्र का होते हैं ना, रंध्र छिद्र, उनमें डायरेक्ट चला जाता है, इतनी हल्की बूंद। भैया बैठ लो आके, आप ही कहें, थोड़ा अच्छा लगता है, इतना छोटा, इतना मतलब फ्यूम बना देता है, धुआं बना देता है पानी को, दवाई को, इसलिए उसका इफेक्टिव है और क्विक रिस्पॉन्स करता है। आप अगर जमीन में मिला के कोई चीज डालोगे तो हफ्ता भर लगेगा, स्प्रे वाली आपको तीसरे दिन नंगी आंखों से दिखाई दे, चश्मा से भी नहीं, आज स्प्रे करोगे परसों जाना आपको दिखाई देगा, भाई साहब स्प्रे का असर तो दिख रहा है, खुद बताओगे आप, तो क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। और दवाई जमीन में मिला के दोगे 20 किलो, और स्प्रे में करोगे उसकी मात्र 5% से लेके 10% में ही काम हो जाएगा, तो कितनी लागत बची। लेकिन वहाँ किसान जोड़ लेता है कि साहब हम मजूर लगाएंगे तो 250 रुपये ले लेगा 1 एकड़ का, 300 रुपये ले, मजूर तो खैर 400 लेगा, तो वहाँ बात आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा धान की तैयारी के समय बढ़िया प्रजाति का चयन करें, मिट्टी की जांच जरूर करा लें, क्योंकि मैं हूँ मृदा वैज्ञानिक,
इसलिए

0: अपनी खेत की सेहत जरूर जाने कि इसमें काई की कमी है, काई की अधिकता है। ऐसा तो नहीं जिस तत्व की अधिकता है हम वही डाले जा रहे हैं, 3 साल, 4 साल, 10 साल हो गए एक ही चीज डाल रहे हैं। 10 साल हो गए हमें पता ही नहीं था हमने घूरे की खाद कब डाली थी, क्योंकि घूरे की खाद है ही नहीं, पशु नहीं पाल रहे। जो है दो चार बुग्गी आपका कूड़ा कचरा होता भी है साल भर का, तो सड़क के किनारे जहाँ कब्जा करने की नीयत होती है आपकी, बुरा मत मानना थोड़ा, वहां डाले आए। साल भर में 2 डलिया प्रतिदिन डालते हो तो 700-800 डलिया कूड़ा कचरा हो जाता है। जब आप कहते हैं ना तीसरे साल तो घूरे के दिन बहुरते हैं, बहुरते कब है, जब आप फावड़ा लेके लगाते हो कि आज इसको खेत में पहुंचाना है, तो वो आपके खेत का च्यवनप्राश है। लेकिन वो जिस तरह से आपने ऊपर ढेर बना के डाल रखा है, बरसात हुई नीचे से छन के जो पोषण था बह गया, उसके बाद पूरब की धूप आई इधर से, पश्चिम की धूप आई इधर से, दोपहरी की धूप आई उधर से, यानी अब आपका चारों तरफ से तप गया। तपने के बाद सूक्ष्म जीव मर गए, सब नहीं मरे, 50-60% मर गए, और उसके बाद जो पोषक तत्व थे वो हमारे इन्वायरमेंट में हवा में गैस के रूप में उड़ गए, और जो उड़े नहीं वो घुल के नीचे चले गए, कहाँ, बह गए पानी के साथ। ठीक है, अब आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल जब भी याद आए,
1: उर्वरकों का सही उपयोग, यह विषय पहले ही आपने जानकारी, और वार्ताकार है डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत। अब कहकर मैं सुनो एक प्यारो सो लोकगीत, जय गायो है स्वामी रामस्वरूप शर्मा ने।

शर्मा और सखियन के स्वर में आप सबने लियो या लोकगीत को आनंद जा के बोल हे चले अयो रे श्याम बरसाने में। अब हम चर्चा कर रहे हैं खेती की तैयारी और हरी खाद का प्रयोग। किसान भैया आप ढैंचा की जो हरी खाद के काजे ढैंचा किसान भैया वो में हैं, बाकी या समय जुताई को समय आ गया हो, यानी कि 2 महीना के आसपास की जैसी फसल है जाए और डंडी कच्ची रहे में सनई न बने, ऐसी स्थिति में ही हमें ढैंचा को खेत में हैरों से जोत देना चाहिए और जोतने के बाद हमें करना ये चाहिए कि संगी संग खेत में पानी लगा दें मैं, जैसे कि बाकी जो डंडी हैं वो ठीक सो कतर के और सड़ जाएं। हरी जो खाद है ये हमारी मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्व तो और जीवाणु जो हैं उनकी पूर्ति करे है, और यह को लाभ ये हो कि हम जो भी रासायनिक उर्वरक DAP यूरिया NP अपनी फसल में डालें, बाकू ये जो जीवाणु हैं वो पौधा तक पहुंचा में सहायक को काम करे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में किसान भैया कई साल से या कुकरवे लगे हैं गर्मी के सीजन में, चूँकि खेत खाली रहें कोई भी फसल गर्मी के समय में ना रहे। और मथुरा जनपद की हम बात करें तो यहाँ करीब करीब 1200 किलोमीटर लंबी

नहर, राजवाह, माइनर, इनकी जो लंबाई है करीब 1200 किलोमीटर है। तो 1200 किलोमीटर की लंबाई के ये जो सिंचाई तंत्र है या के माध्यम से हमारे किसान भैया को यहाँ गर्मी में भी पानी मिल जाए, तो सबरे भैया ना कर पावे, लेकिन अगर 10% भैया हो हरी खाद के काजे ढैचा की खेती करें और बाकू पलटें, तो निश्चित रूप से धरती माता से लेवे लेवे के संग में हम बाकू कछु प्राकृतिक तत्व तो वापस भी करवे की आदत बनाए ले में। तो हरी खाद के रूप में या को प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। हालांकि खेती पे लगातार किसान भैयान की निर्भरता बढ़ी है, बच्चे वाली बच्चे इनकी आवश्यकता की पूर्ति की जिम्मेदारी बढ़ी है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी की हम बात करें तो वाके माध्यम से भी हमारे किसान भैया लेवे लगे हैं। तो तकनीकी रूप से जो लाभ उन्हें मिलो है वहाँ से अब वो खेती में नए नए प्रयोग करवे लगे हैं। ढैचा की हरी खाद की बात है, वाके संग में दलहनी फसलन की खेती गर्मी के समय में लेवे की बात है, जहाँ विशेष रूप से मूंग की खेती किसान भैया ले में हैं। तो ये जो फसल हैं इन फसलन में जमीन में जो इनकी जड़ हैं उन जड़न में गांठ बने, नोड्यूल्स बने, और उन गांठन में वायुमंडल से नाइट्रोजन जैसे तत्वन को अवशोषण करके उन गांठन में वो इकट्ठा होए, और जैसे ही हम खेत की जुताई कर दें तो ये जो जड़ हैं ज़मीन के अंदर ही मिल जाएं, यानी कि नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप में हमारी अगली फसल के काजे हमारी ज़मीन में सुरक्षित है जावे है। तो किसान भैया ये सब चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और हमें अपनी मिट्टी की सेहत सुधारवे के काजे जो काम करने चाहिए, गर्मी की गहरी जुताई, बार बार खेत को पलट हो जाते के वहाँ में कीट और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो नियंत्रित है जाएं, या के अलावा ये हरी खाद, ढेंचा की खाद, सनई की खाद, दलहनी फसलन की खेत में पलट के खाद, तो इन सब खादन को प्रयोग करके हम अपनी मिट्टी की सेहत सुधार सकें। और जब हमारी मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तो वैसे आगे मिलवे वाली जो फसल है वाकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होगी, वाकी उत्पादकता है वो भी अच्छी होगी, और वह हमें चमक से लेके हर चीज़ स्वाद सुगंध हर चीज़ अच्छी होगी। तो निश्चित रूप से हमें रासायनिक खादन के संग में इन प्राकृतिक चीज़न को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गांवन में अब पशुपालन धीरे धीरे घट पे लगो है। जब पशु ही नहीं होंगे तो गोबर कहाँ से आवेगा, और गोबर नहीं होगा तो गोबर की खाद कहाँ से आवेगी। तो हमें गोबर के खाद के विकल्प के रूप में अपनी खेती में हरी खाद के रूप में ढैंचा को प्रयोग करना चाहिए, और या का ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है बीज की व्यवस्था। जा समय पर ढैंचा की फसल आवे वह समय पर ही आपको बीज अगले साल के काजे लेके रख लेना चाहिए, क्योंकि किसान भैया और जा समय आप फसल लगावे की तैयारी करो वह समय बीज बाजार में ढूंढे से ना मिले, और मिले भी है तो भपको मिले भयो मिलेगो खराब मिलेगो, जैसे कि आपकी जो फसल है वो गड़बड़ होने की संभावना बनी रहे। तो किसान भैया ये हमारी चर्चा रही अब हरी खाद के रूप में ढैंचा के प्रयोग विषय पे। और देखो मौसम की स्थिति तो आपको मालूम ही है, अब तो रोज़ाना मौसम के अलर्ट विभिन्न माध्यम से सरकारी माध्यम से हर मोबाइल पे आए हुए लगे हैं, और सब किसान भैया वो सचेत रहें कि आज आंधी आवे वाली है कि आज बरसात आवे वाली है। तो किसान भैया देखो कल के आंधी तूफान और बरसात से ही कई इलाके में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, तमाम खंभा टूट के आंधी बहुत जोर की ही। तो हमारे कार्यक्रम की समयावधि अब समाप्त हो रही है, अगले कार्यक्रम में फिर आप सबसे मुलाकात होगी गीत संगीत और विशेषज्ञ के संग भेंट वार्ता। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम।

किसान भाई और बहनें अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, और कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दिलीप यादव FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और हेमंत कुमार को फिल्म संबंध में, भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आइए सुनते हैं फिल्म ब्रजभूमि से ये गीत, स्वर रविंद्र जैन और साथियों का।

0: अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन और साथियों को फिल्म शिव महिमा में। गीत महेंद्र दहलवी का था, संगीत अरुण पौडवाल का। इसके साथ ही भक्त परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा से रेखा चित्र, ब्याह को बिचौलिया।
1: बाबा मुरलीधर को ब्याह बरात करवे की बड़ी भारी होश रह गई। वे काऊ ब्याह के नौते को ऊकर नाय देवे, मूड़ पे रेशमी स्वाफा को बांधे, हल्की हल्की भूरी कारी मोच राखे, कानन में मुरकी गरे में तोरा पहर के ब्याह को कुर्ता और धोबती खादी की धोबिया पे धुवाए के स्त्री कराए के नाई तहताक धर के राखे। जाने काखन नो तो आ जाए जानो पर जाए, पामन में लाल रंग की चमड़े की चढ़ेमा पनान को पहर के नाई जब चले तो पन्हा चर्र मर्र करेई। माथे पे गोपी चंदन को टिपका लगाए के कुर्ता पे खादी की जवाहर काट पहरे, जाकट की बटन कबू बंद नाए करे। सामरो सलोनो रंग उठी भई नाक, चोरो माथो बिचौंदी कदकाठी, पटली की लांगदार धोती कु सामुई की फेंट कसके काछे। गांव में तो को नो तो देव चाहे मत देव, मुआते वे जैसे ही पतो चलतो वे बाके पहले ते ही घर आयो जायो करे। बाकू ब्याह की व्यवस्था के अनुभवन को बतावे कि वाके न्याय ऐसो भयो, तू या बात को ध्यान धर लीजो, नहीं तो धोखो है जाएगो, तू खिसियानो सो ठाड़ो रह जाएगो। शहर ते सौदा लेवे जाए तो मुँह ले चलियो, तू पे सलनाए पड़ेगी, शहर के दुकानदार तेरे कानन ने कतल लेंगे, ऐसी गलती मत कर बैठियो। करूगी मीठी बातन ने बनाए बनाए के नाई अपनो पौआ 35 राखे। काऊ को ब्याह के काजे रुपया ढीला की चाहना हो गई तो वाऊ को जुगाड़ बनाए के अपनो एहसान ब्याह वारे पे चढ़ाए देवे। इतनो कर्त करामत वे ब्याह के मुख्य कर्ता धरता बन के बैठ जावे। वे या को ध्यान राखो करते कौन को छोरा कुआरो है, कौन की छोरी कुआरी है, वा को कहां गुंताड़ो बैठ जाएगो। छोरा में कछु कज हो तो छोरी कजवारी ढूंढवे में जुक्ति में लग जावे। सुआ डोर डार के कहू न कहू ते बा को जब तोली सनमंध नाय बैठार देते तब तानु चैन ते नाय बैठे। रात में सपनों याई प्रकार को देखे और सपने में बड़बड़ामन में ऊ व्यवहार भिड़ावे की बातन कुई करयो करे। बिने आन गामन में ऊ ध्यान धरनो परयो छोरा छोरीन को। एक बेर एक ब्याह में विघिन फैल गई, लत्ता फटवे की नौबत आई गई, आयवे बारे सायन में बिन की रीझ बूझ कम रही। बिन ने सोची जिका भयो जितो सब करे कराए पे पानी फिर गयो, बड़ी सोचा विचारी करन लगे। फिर बिन के ध्यान में एक जुक्ति आई के बंदूक ले आऊं, गांव में काऊ पे बंदूक नाए फिर तो मुए हार के झकमार के बुलामिंग गई। बल्लू मुखिया ते दाम उधार लेके एक नाली बंदूक ले आए, कंधा पे बंदूक लगाए के घोड़ी पे बैठ के नाई नाऊ के हरिवाने संग लेके चल दिए। एक गांव में जाए के सांझ है गई, गर्मिन के दिन आए, वे पसीनान ते बहुत परेशान है रे दुखियाए रहे। बिन ने सोची या कुआ पे नावा धोई कर लीनी जाए, उतर के घोड़ी पेड़ ते बांध दीनी। नाऊ को लोटा में पानी भल्लायो, पानी पी के दिशा मैदान को चल दिए। गांव बारे बिनमाऊ ठाड़ी ठाड़ी देख रहे, नाऊ के ते पूछी के कुनसो गांव है। नाऊ को बोलो नगरा बखेरा के मुल्ली बोरे, गांव की छोरी को छोरा देख रहे हैं। या को सुन के गांव बारे एक दूसरे को मोड़ो देखन लगे, सबन के छोरा कुआरी डोल रहे। तब तानु मुरलीधर डोल डाल है के आए, तब तानु बिनते मिलवे के लइया कैउ जने ठाड़े हते। सबन को देख बिने बूझवे में देर नाय लगी के नाऊ ठाकुर ने करामात कर दीनी। गांव को झम्मन बोल चौन पर्यो के बोरेजू आज तो यहाँ रुको। मुरलीधर बोले ना है वही दिन बलाए निकस जामेंगे, अजी आज तो रुको प्यारे प्यारे बोलो।

माऊ देखत भयो मन में सोचन लगे कि जी गोरो भूरोए ना को या की सुवा सारी है या को छोराऊ मलुकानो होएगो। नाऊ ठाकुर माऊ देख के बोले कह भाई ठाकुर रुकेगो के चलेगो। नाऊ को तो पढ़ो पढ़ायो तो यो पहले थे ना ही रुकोगे तो ये सब बुरो मानेंगे। रुक लियो कुआ के मड़ पे चढ़ के ना ही लोटा है माटी ते माजवी लगे लग गए ला स्वाफी दे स्नान बनाए लऊ।

चार स्वाफी दे स्नान बनाए लम। नहाय धोए के लत्तान ने पैर के चलवी भई। प्यारी ने कही या गली माऊ इतकू ए हमारो नोरो माई बैठेंगी। साकरी की बुनी खाटन पे दरी बिछ गई। गेंदुआ लगाए दिए हुक्का भर के आए गयो। ब्याह बरातन के किस्सा चलवी लगी। केऊ छोरा उजरे उजरे लत्तान ने पैर के बिन के ऊर पास बैठ गई। बिन के सामुई नोहरे बारे को छोरा बैठो। छोरा को बाप बोलियो कि जिसा परसूता है दर्जा चार में पढ़े मदरसे में। मिसुरन ने मॉनिटर बनाए दियो है। सबरे छोरानते पहले जाए सवनते पाछे घर को आवे। हम तो याए कछु काम की कहमे ही ना आए। पढ़वे पे ही छुट्टो छोड़ दियो है। मोखादी पाड़े यादे इमला लिख लेवे। गांव में चिट्ठी आवे तो फर्राटे ते बांच के सुनाए दिए। बड़ो ही सूदो छोरा है। मुरलीधर बोले छोरा तो चोखो है। तुम पक्को समझो हमारे गांव को हरदयाल अपई छोरी को सनमंद कर देगो। हमारो ही घर कुनवा को है। छोरी बड़ी मलूकानी है बड़ी कमेरी है। ढोर चौपेन को काम कर लेवे बड़ी सुतेमने। जहां जाए उजी तो सो है जाए। नाऊ ने कही अजी वाह छोरी को का परमानो है। ऐसी बतरामन होत हवामत रात घिर आई। रात की ब्यारू को खन हि आयो। पीतर की थारी में खीर पूरी और आलू की तरकारी आ गई। लप भर के बूरो डाल दियो। बामे गंगा सागर ते घ्यो कुरे दियो। बड़ी भारी खातर तसल्ली करवे लगे रहे। ब्याह वारो छोरा बीजना लेके ब्यार कर रहे हो करतो रहे हो तब तानु जेमते रहे। रात को जब सोमन लगे तो छोरा ने मुरलीधर के पाए दावे। भूमरे ही नाय धोय के कलेऊ करके चलवे लगे। तो प्यारे गांव के सिमानिन ताऊ छोड़वे आयो। तो वाने अपने खेतन ने बतान लगयो केऊ चके उल्ले पीपड़ते वा नीम तानु और हमारो ही वा गूलरते करील तानु। दूसरो लंबर हुए चकोए विदा करके ऐसे ही द्वेगाम छोड़ के फिर मुरलीधर याही प्रकार सो दो छोरान के सनमंद और तय कर दिए। अठवारिन तानु छोरान को देखत भये कछु छोरीन के ब्याहन के जिकर जिकरामनु कर बैठे। गांव में पहुंचे के चौपार बैठे सिगरो गांव मुरलीधर के ढिंग आयत पायत बैठे गो। काऊ के छोरा को और काऊ की छोरी को ब्याह को बनका बनाए दियो। अब तो बिनको पुरानो ढर्रा चलवाजो। तब तानु साये बंद रहे जब तानु तो याई प्रकार सो अट्ठा पंजान ने लगामत रहे। जैसे ही साये खूटे चार पांच बरात गांव में बुलाए लेवे इते कई बरात ले जावे। एक वीर ऐसे ब्याह में फंस गए बातन के लपेटा में आए गए। एक छोरी को द्वे बरात आए गई। आपस में ही मोहबाद है गयो। मुरलीधर को जेल की हवा खानी पड़ गई। केऊ साल में जाए के सुरझारो भयो। मुकदमा चलतो रहो और ब्याह बरातन को हिसाब किताब चलतो रहो। नाऊ ठाकुर मर गयो तब ते कुआरे छोरान ते सेवा लेवे। बुई छोरा बिन के सबरे कामन ने करे। कछु दिनान में वाको ब्याह है जाओ तो दूसरो छोरा आ जावे हो। या प्रकार सो नई नई छोरान को संग बनोई रहे हो। छोरान ते जिनको बिनको कमरा भरो ही रहे हो। जाड़े के दिनान में बिन के कमरा में कमरा के सामी अघानो लगे हो। इत बित के अरोसी पड़ोसी ताप भी आवे। एक छोरा ने पूछ चोन लई तुमने इतिक ब्याह कराए दी ने छोरी छोरान के अपनो ब्याह चौनाई करायो। या बात पे मुरलीधर कछुदेर चुप से भई। फिर कहन लगे हमारो ब्याह तो सबरो मामलो हमारे दादा ने पक्को कर दियो। छोरी बारी ने दिनाऊ सुझाई लियो पर हम पे रहो न गयो। हम बुआ गांव में जाए पहुंचे चलो छोरी ये देखिया में छोरी कारी तो ना है। जाए के छोरी बारे के दरवाजे के द्वे तीन चक्कर लगाई दिए पर छोरी लखाई न पड़ी। बाको काका सामूई ते आए रहो हमने राम राम कर दी नी हम माऊ देख तो ही रहो। होले होले सिगरो गांव इकठोरो है गयो। अरे छोरा कुआरी मारे आए गयो हमारो ससुर नेक ताते माथे को वाने हम फटकार दिए। हम वाते चले सो अपने गांव में आए के रुके। पीछे पीछे हमारे छोरी बारे ने नाव को खंदाई दियो और हमारो ब्याह बिगड़ गयो। बाद नाते फिर कोई छोरी बारो हमारी देहरी पे नाय चढ़ो। जबई ते मैंने किते को ब्याह कराए दी ने काने भेड़े लंगड़े लूले कारे पीरे सबन के सनमंद भिड़ाए हैं। जैसो मन का होए बुआए माई लगाए दियो जाए। तबई एक जनो बोलो कि तुम ब्याह करावे में अनाप शनाप झूठ बोलो जिका पाप ना है। बिन ने कही कि ब्याह करावे में और काऊ की रोजी रोटी दिवाएवे में झूठ बोलवे को दोष ना होए। झूठ झूठ में बड़ो चक्कर रहे कहाँ झूठ बोलियो जाए कहाँ न बोलियो जाए। या को ध्यान धरनो पर है कछु दिना पाछे नन्नू के छोरा को ब्याह आए गयो। केऊ भारकस

0: करी गई। रथ में दूल्हा बैठो, मुरलीधर बंदूकें लेके जेब में नए नए एक एक के नोट धर लिए और रब्बा के बीच में बैठ गई। गैल में रब्बान में दौड़ होनन लगी, मझोली न्यारी दौड़े कछु देर में रसिया गामन लगे। जो चोखो सो रसिया लगे, बाई को एक करकरारो सो रुपया निकास के मुरलीधर इनाम देवे। दो घंटा की गैल को पतौ नाय चलो कब बरात बारो गांव आए गयो। सबरे ब्याह में बड़ी भारी रौनक रही, पेट पीटा के जनाने छोरा ने, छोरा के नाच पे मुरलीधर ने बड़े रुपया उवारे। नचकैया बेर बेर फिर के बिन के ओर पास नाचत रहो। विदा के खन समधिन ने पकड़ के हरदी ते बिन के सबरे लत्ता सांदी ने। थापे मार मार के रंग दिए, माथे पे बेंदी लगाए दीनी, फरिया उड़ाए दीनी, बैयरवानी बनाए के आंगन में गारी गाय गाय के नाच नचवायो। तबऊ वे हंसे हंस के रुपया लुटामते रहे, वैसे ही स्वरूप ते विदा है के चल दिए। गांव के छोरा बोले, तुम तो बड़े दिप रहे हो। मुरली ने मुरलीधर ने कही, याई स्वाद को तो ब्याह कराऊं और काय को कराऊं, चलो कल की फिर बरात है। कुल्ला को पानी ऐसो मोड़े लगे है, उतरबे को नामु ही नाय ले रहे हो। ऐसे ब्याह बरातन के मौजी मुरलीधर को सबरो काम याद करे। वे अब नाय रहे, पर विनकी करनी को याद करके करी करके अबऊ ठिठोली होयो करे। आज वो काऊ के घर करनी कर्तव होए तो विनकी नकल कर करके पुराने किसान को कह करके मन बेला में। पर अब को काऊ को ब्याह में बिचौलिया नाय बने। गांव में केऊ छोरा कुआरी डोल रहे हैं, बिन के दांतों नाय को देख रहे हो। आज बिन की कमी सबरे गांव में खल रही है, आज मुरलीधर होते तो छोरा काई को कुआरे रहते।
1: ब्याह को बिचौलिया। भैया अभी आपने सुनी डॉक्टर उमेश चंद शर्मा से ये रेखा चित्र। इसी के साथ आज का प्रसाहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: आगे प्रादेशिक समाचार। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में

0: महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
2: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम

0: को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
2: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन जेई एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे कार्यक्रम शाम सुहानी में। आप करेंगे हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9419225575 9412225575। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप संदेशों के साथ।

जुड़े हैं श्रोता साथी व्हाट्सएप संदेशों के साथ। आप हैं कार्यक्रम में छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश राशि, राशीतल राजेश, आप संभाजी नगर से संदेश भेजते हैं। और आप भी जुड़े ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, हिंदुस्तान रेडियो मित्र क्लब से ये श्रोता साथी हैं। और आप भी जुड़े गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख, जुड़ेश अनारकली बाजार जगराओ पंजाब के श्रोता साथी सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई, सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयपाल यादव कार्यक्रम में। और अगला संदेश लेते हैं श्रोता साथियों का। संदेश भेजा आपने मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमकुम गुड़िया ने। संदेश के साथ में अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबियान और सर रेहान ने भी संदेश भेजा। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद प्रदीप येमेकर का संदेश मिला। रिंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा भी जुड़े आज के इस शाम सोहनी कार्यक्रम में। संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़, कमल सहारी, पिंगवाला चौक गुड़िया चैनल घर के श्रोता साथी, गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर कुंडलवाली महाराष्ट्र से, आप संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सावती भाकरे शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता साथी हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता का संदेश मिला। और आप जुड़े अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। मैसेज के साथ में निखिल भाटिया, नीति भाटिया, महरीन भाटिया और मैसेज के साथ है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल जैवी, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का ये मैसेज, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम नसीर, नोजू बिट्टू भैया, साजिदा हिना कौसर है, मोहम्मद मोहला हलवाइया शेरकोट जिला बिजनौर से। एक और मैसेज श्रोता साथी का अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल और प्रवीण आदर्श नगर बठिंडा के श्रोता साथी, बाजार चौक पुलगावा महाराष्ट्र से है अबुल कलाम और नजीमा अंजुम। आइए सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर ये नगमा, इसीलिए फिल्म खिलौना से, आवाज इस गीत में मोहम्मद रफी की।

गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस खूबसूरत से गीत को आवाज़ दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी। फिल्म खिलौना से था ये नगमा। अगला संदेश श्रोता साथियों का लेते हैं, जुड़े हैं व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से हमसे साथी।

जुड़े कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ में छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसरत और अल्ताफ नीलूफर फातिमा जुड़ी कार्यक्रम में। अगला संदेश श्रोता साथियों का गांव जखोद राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक जुड़े कार्यक्रम में और मैसेज के साथ में है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, विशाल सपकाल, शास्त्री नगर बीड शहर के श्रोता साथी हैं। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रिहान शेख कार्यक्रम में। मैसेज के साथ में दरियापुर भावरी महाराष्ट्र से गजान येले, नवदीप विश्वदीप येले, सुशील येले, शेरी बडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर का मैसेज, असादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। सुधीर श्रोता जुड़े कार्यक्रम में सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन कार्यक्रम में। बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, हलीमा डावर, बेबी जिक्रा और आयशा खत्री। शाम सोनी कार्यक्रम में फरासी जिला हिसार से है राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, कुमारगढ़ी श्रीरामपुर से अशोक।

सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका सनिका पुनावली पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका और विशाखा सोनवने जुड़े कार्यक्रम में फरखान गुफरान जाकिया बाजी और अदनान नुमान आसमा खुशी ये सभी श्रोता साथी जुड़े कार्यक्रम में जी अगले संदेश के साथ में भोई वड़ा पैठण से हैं ये श्रोता साथी और अगला संदेश संजय ढींगिया नमन अपार ढींगिया का गांव चौलदा बागपत से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता साथी हैं गणी डुडवा वारा से शमसुल कमर राही शाहीन अदनान फैजान अनु उस्मान और कलीम अंसारी भी जुड़े कार्यक्रम में गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे मरुतराव पांचाल अपनी फरमाइश भेजते हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी भव्या कुमारी निवेश और नियति कुमारी विजय महोबिया कविता महोबिया सोनू मोनू रानी सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू का शिवपुरम कॉलोनी कमला देवी महोबिया से ये मैसेज अगले संदेश के साथ में मोहम्मद बकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा नसरीन रोजी बिट्टू भैया और हिना कौसर जिन भी श्रोता साथियों का मैसेज कार्यक्रम में शामिल हुआ है वो दोबारा मैसेज न भेजें शमसुल खान अदनान फैजान ताबिश आबाद और अनु खान राही नगर गंजुडवा वारा के श्रोता साथी हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीतिका और भानु प्रकाश जुड़े हैं कार्यक्रम में अशोक जसवत आनंद लोक कॉलोनी गोवर्धन रोड मथुरा से राधा सिटी मथुरा के सुधी श्रोता शारदा प्रसाद प्रजापति नगला राणा सिहुरा से चौधरी महेंद्र सिंह पुटियाकुला दुर्ग से संजय साहू सुजाता शशांक साहू और सीमा साहू भी जुड़े कार्यक्रम में ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर आई मेहरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता साथी हैं बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर शोभा ताई दीपाली और श्लोक मानकर सहदेव दामोदर शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार जुड़े हैं कार्यक्रम में खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार साबित खान अगले श्रोता साथी कार्यक्रम में अपने मैसेज के साथ में है नफीस अहमद अंसारी शमीम अहमद अनीस अहमद अंसारी अफीज अहमद और सुनील रस्तोगी मोहम्मद रजा ये सभी बनारसी से राजा नगर बनारसी से बनारस से संदेश भेजते हैं कुरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज साहू सुष्मिता और दीपिका साहू का मिला आई सुरेश श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म आंखियों के झरके से ये गीत गीत संगीत रविंद्र जैन का स्वर दे रही है गीत को हेमलता

लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या खुराना, आरब और एसके पप्पी और अगले श्रोता जुड़े कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ। मैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु, सत्यम और अर्णव आनंद, बोड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत जुड़े कार्यक्रम में। जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ कार्यक्रम में। अगले श्रोता साथी कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ में ये श्रोता साथी हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चाला, मानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं, जय नवती केवट जी, ये सभी जुड़े श्रोता साथी कार्यक्रम में। छनूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी कार्यक्रम में। मैसेज के साथ में श्रोता साथी नाज पैलेस अमजेर अजमेर शरीफ से हैं, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद अरहाम, समस्त हाशमी परिवार है, ये सुधी श्रोता है। और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दशानी और निमित आहूजा ने भी मैसेज भेजा। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानगुला गोपाली, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश का मैसेज। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, रतिका और प्रभा देवी जुड़े कार्यक्रम में। आदर्श नगर मरोट पंजाब से ये सुधीर श्रोता कार्यक्रम में। राजशर्मा, मीरा शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा और सौरभ शर्मा जुड़े कार्यक्रम में। सायना शर्मा और निवान शर्मा

श्रोता साथी जुड़े कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ में कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ से है उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफ्फार खत्री हैं। कार्यक्रम में गुगामा जिला खरगोन मध्य प्रदेश के स्तुति श्रोता और आप भी जुड़े राजेंद्र कुमार, मलगीत कौर, आरती राघव हरमन और इनके परिवारिक जन कार्यक्रम में। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरमा शर्मा कार्यक्रम में। गांधीनगर महाराष्ट्र से श्रीकंत बाठे, संदीप बाठिया, मूल बाठे का ये व्हाट्सएप संदेश। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया जुड़े कार्यक्रम में। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू धनौरी तेलीवाला के सुधि श्रोता और ये भी जुड़े सुधि श्रोता कार्यक्रम में। शाम सुहानी में कपिल, शोभा, कुंदीबाई बागरी कार्यक्रम में। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर ये सभी

सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हैं सुधी श्रोता। और अगले श्रोता कार्यक्रम में जुड़े संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। आइए सुने इनकी पसंद पर यह गीत, फिल्म साथी से, आवाज कुमार सानू की, गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

0: अभी आपने सुना फिल्म साथी से ये गीत, आवाज दे रहे थे गीत को कुमार सानू और साथी। गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का था और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम सुहानी अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए विशेष श्रृंखला, सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के कृषि मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद इन संपदाओं पर वो राष्ट्र

0: अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिला हो, ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लैवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल

0: ऐसा आया। तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ। और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस

तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे, जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को

0: भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
1: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से विचार से आत्मा से सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोडमैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोडमैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटाडेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उस सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया, लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा है।

0: चाहे जेन अल्फा होगी, बीटा होगी, जेन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले, जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर का की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एक

0: एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्व

0: विश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। ये कार्यक्रम अभी आपने सुना FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देशगान। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ एट नाइन, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने की तुम एक बेगैरत इंसान हो

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12

0: सवाल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सके।

0: सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage.

कार्यक्रम नवरंग सुनने वाले सभी स्तुति श्रोताओं को अनुराग पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आ रहे हैं आपके व्हाट्सएप संदेश हम तक और आ रही है आपकी फरमाइश हम तक। आरंभ करते हैं आज का नवरंग कार्यक्रम इस व्हाट्सएप संदेश के साथ। आप हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और आप भी जुड़े पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर गांव पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से। अगले श्रोता कार्यक्रम में नवरंग में हैं आप भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार और नवरंग कार्यक्रम में हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी और आरती अरोड़ा। अगले संदेश के साथ पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह का ये मैसेज मिला। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेशु संस्कृति और पौरुष का ये मैसेज।

0: अगले संदेश के साथ गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राधे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सफर्द देशमुख, सानवी कल्पना का ये संदेश मिला। मैसेज भेजने वाले मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुल निशा, शुभिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। दिलावर बावली महाराष्ट्र से गजाना नीले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक शेरी, बंडे रकुला से है अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। सोमना जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष जाधव, एकनाथ, संगीता जाधव, नेहरू चौक पटना से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया, ये सभी हैं सुधी श्रोता। नवरंग के विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक मैंक मूर्त, चेतन नाहटा है बोरखेड़ा पीतरामा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसूत, अर्णव आनंद, सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से हमें मैसेज भेजते हैं, कुमार गली श्यामपुर से हैं, अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, दीपिका सारिका दले, पुणे वाले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा अविका विशाखा सोनवने। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में खबर, छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र, सावित्री और प्रतीक कुमार। मैसेज के साथ जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुष वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप का संदेश मिला। मोहाली पंजाब से बबन मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में और आप भी जुड़ चुके हैं। गणेशपुर गंडवा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, क्षमा परवीन, साइमा सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान। लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। जिन भी श्रोता साथियों का मैसेज कार्यक्रम में शामिल है दोबारा मैसेज न भेजें और आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। लोचन सिंह गोपाल नगर मथुरा से डॉक्टर लोचन सिंह, धीरेन्द्र सारस्वत एडवोकेट जनकपुरी मोहली रोड मथुरा से राजू बाबा, इंद्र मोहन वर्मा, चामुंडा माता का मंदिर गोपाल नगर मथुरा जंक्शन से ये सुधी श्रोता, राजकिशोर दीक्षित सीडीएस नगर मोहली रोड मथुरा से, विष्णु कुमार अग्रवाल, पूर्ण नायब तहसीलदार मानस नगर मोहली रोड मथुरा के सुधी श्रोता, डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप, राजू गुड्डू भी जुड़े हैं कार्यक्रम में और एक संदेश के साथ में। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा और अनस और रेहान भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आप भी जुड़े हैं मरुण पंजाब से कुलवंत सिंह गिल, जसवंत सिंह गिल, रमन गिल, बलजीत, दिशा और इनके पारिवारिक जन। कवर कॉलोनी बड़ा से जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली का भी संदेश मिल चुका है और आप भी जुड़े हैं कार्यक्रम में मैसेज के साथ में। रजौरी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय बानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और बघेल परिवार जुड़ा है कार्यक्रम में मस्जिद के साथ में। डी अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार और अर्चना कुमार। आई सुने इनकी पसंद पर, श्रोता साथियों की पसंद पर शालीमार फिल्म का ये नगमा, संगीत राहुल देव बर्मन का, आवाज किशोर कुमार और साथियों की।
1: एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, तुम्हारा कोई कैरेक्टर है ना, ईमान ना वफादारी,

जुड़े हैं सुधीर श्रोता कार्यक्रम नवरंग में, लेते हैं आपके भी मैसेज। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर अक्सर हरिद्वार से ये मैसेज। मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल इंदूर, डॉक्टर सुनील कुमार, जिला श्री गंगानगर राजस्थान के ये सुधीर श्रोता हैं। चक 5 MD पतरोड़ा से ये मैसेज भेजते हैं। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तनवी बोर्ड और अंकित कांगड़ा है एकता कॉलोनी रोहतक से। अगले सुधीर श्रोता है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्व, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने ये मैसेज भेजा है हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। अगले मैसेज के साथ में है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांव चौलदा बागपत से संजय ढींगे, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने भी मैसेज भेजा। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत मिशन और बेबी जनाविका, बटिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी तस्तानिया और कोई

आइए सुनते हैं सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म शर्मीली से ये गीत। आवाज इस गीत में किशोर कुमार, राजेश खन्ना की, गीत गोपाल दास नीरज का, संगीत सचिन देव वर्मन का।

और आइए लेते हैं सुधी श्रोताओं के ये मैसेज आप जुड़े कार्यक्रम में। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर, ये सभी गांव दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं सुधी श्रोता। और सहावर रोड गई जुड़वावारा से जुड़े मोहम्मद उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमसुल कमर राही। और अगले संदेश के साथ आप छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम सेन और अक्षय सेन,

पुर गंजुडू अवरारा एटा उत्तर प्रदेश से हैं। एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साहिमा फारूक, सरफराज शेख, गुल फराज और बेबी मुस्कान। आप जुड़े कार्यक्रम में रश्मि झरना, भरत कुमार राजकोट गुजरात से, नवरंग कार्यक्रम में नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। दांडी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल बाठे भी जुड़े हैं नवरंग में। बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से मैसेज भेजते हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरुलाल और अविनाश सिंह।

आप सुना चाहते हैं फिल्म बाजार से ये गीत, आवाजें लता मंगेशकर और तलत अजीज की, गीत मखदूम मोहिद्दीन का, संगीत खय्याम का।

लता मंगेशकर और तलत अजीज को भी सुना आपने फिल्म बाजार में। अगला व्हाट्सएप संदेश श्रोता साथियों का। आप जुड़े हैं कार्यक्रम में संदेश के साथ, गंज जुड़वावारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, अयान अंसारी और उस्मान अंसारी ने संदेश भेजा। और आप जुड़े बुराला खुर्द महाराष्ट्र से, शिवाजी चौक से हैं आदिनाथ बाग, अमोल बाग, गुड़िया कृष्णाली और अशोक देशमुख। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर, अलकमा खत्री और अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादा पत्री। जामा मस्जिद रोड गुगावा से हैं हाजी साक लोला मानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। एक और मैसेज गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना। शेरवानी स्कूल गंडोरावाड़ा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज लुबना और आलिया अंसारी। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर अलकमा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार और लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, कुमारी अकीता

चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा जुड़े हैं नवरंग कार्यक्रम में, और आप भी जुड़े रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से मैसेज भेजते हैं, साधुल शहर राजस्थान से हैं, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, अकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए और संजीव डाबे राव, ये सभी स्तुति श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम में और अगले साथी हैं कार्यक्रम में, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और जुशा गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। नवरंग कार्यक्रम में है मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, स्वर्ण सिंह गिल, रजीत, राजदीप, गुरु सिंह, शुभम और गुरलाल अविराज, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और बेगम अफजल। आइए सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म पाकिजा से ये गीत,

कैफी आजमी के गीत को संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने। आवाज दे रही थी गीत को लता मंगेशकर फिल्म पाकीज़ा के लिए।

व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े श्रोता साथी हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून ने मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये मैसेज भेजा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, राधा रामदेव, संजय डींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल और दर्शन भाई का मेरठ कैंट का ये संदेश। अगले सुधी श्रोता खुर्जा उत्तर प्रदेश से है तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा, आप भी जुड़े। प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया, विक्रम कड़स बासरा, सचिन, सतीश और योगेश जुड़े हैं कार्यक्रम में। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के उद्देश्य होता है। और नागचुर रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जावल और राजेंद्र कटारे, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जुड़े हैं, मोहनलाल वायन शेरकोट जिला बिजनौर से हैं, मोहम्मद वकार फरीदी, सितारा बेगम, नसीन रोजी, परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आइए सुनते हैं सुधी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत, जिसे लिया फिल्म नदिया के पार से। इस गीत को अपनी आवाज से सजा रहे हैं हेमलता और साथी।

नवरंग कार्यक्रम में जुड़े लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन और प्रकाश जैन नांदेड़ से ये संदेश था हम तक। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें संदेश भेजा। गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और परिवार इनका। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और रामेकर परिवार रहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से संदेश के साथ जुड़ा रहा। अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, बसंत लाल साव, हीरा मोती, पन्ना लाल साव, ये सभी दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से जुड़े रहे श्रोता साथी। नवरंग कार्यक्रम में आप जुड़े कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले मैसेज के साथ में सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव अनारकली बाजार झगराओ पंजाब के सुधी श्रोता, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द सिंह कीरत, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से, विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए और संजीव डाबेराव ने संदेश भेजा था हमको। अगले संदेश के साथ में जुड़े सुधी श्रोता हैं कार्यक्रम नवरंग में। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा और राधिका प्रभा देवी। इसी के साथ आज का नवरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए बी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी श्रम, प्रस्तुति TN शर्मा की है।
1: प्रस्तुत है बी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी श्रम, प्रस्तुति TN शर्मा की है।

आपने सुनी बी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी श्रम। इसमें भाग लिया था नेम सिंह, राम सिंह, भूरेश कुमार वर्मा, कृष्णा कुमारी माथुर और प्रेमलता चौधरी ने। वादक कलाकार थे अत्तन खां और सिकंदर। इसके प्रस्तुतकर्ता थे टीएन शर्मा।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं अनंत लाल और साथी आप सुनेंगे इनसे शहनाई वादन, जो राग मधुकोश में निबद्ध रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के आज के कार्यक्रम में अनंतलाल और साथी का शहनाई वादन, जो राग मधुकोश में निबद्ध था। और आइए सुनते हैं पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन, जो राग छायानट में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन, जो राग छायानट में निबद्ध था। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक

0: और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial